0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य शा

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सकसंवद 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि तदनुसार 22 मई 2026। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

की पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना के साथ।

आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये भजन। रचना है रविंद्र पठानिया की, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज सुबह 6:30 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ, भूले बिसरे गीत सुनेगा सुबह 6:40 पर, संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर, हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनिएगा 7 बजे से।

कृषि संकेत का समय होगा सुबह 7:05। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा सुबह 7:10 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनिएगा आज सुबह 7:20 पर। कार्यक्रम गांधी चर्चा सुनिएगा सुबह 7:45 पर। और समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8:00। आज सुबह 8:15 पर सुनिएगा लोक संगीत। सुबह 8:30 पर सुनिएगा रूपक कलरव, आलेख मनोज पारसर, प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी। सुबह 9:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। सुबह 10:00 से सुनिएगा जिले की चिट्ठी, यादों का कार्यक्रम। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल सिंह गिल से जय शेखर की बातचीत, यादों का कारवा सुनेगा आज सुबह 10:05 पर। आपकी पसंद सुनेगा सुबह 10:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 11:00 से। सुबह 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार। दोपहर 2:30 पर समय होगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। आज शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवावाणी। प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्ज और लम्हे सुनिएगा आज शाम 5:30 पर। संगीत सरिता का समय होगा शाम 5:35। आज शाम 6:00 से सुनेगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। सदाबहार गीत सुनेगा शाम 6:30 पर। लोक रंग सुनेगा शाम 6:45 पर। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7:00 से। प्रादेशिक समाचार सुनेगा शाम 7:10 पर। लोक रंग सुनेगा शाम 7:20 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश सुनेगा शाम 7:30 पर। आज रात्रि 8:00 से सुनेगा चित्रपट संगीत। रात्रि 8:20 पर सुनेगा आकाशवाणी के 90 बरस की सुनहरी यादें। आमंत्रित मेहमान डॉक्टर ललित मोहन, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी व पूर्व डीन केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से जय शेखर की बातचीत। समाचार संध्या सुनेगा रात्रि 8:45 पर। मन चाहे गीत सुनेगा रात्रि 9:00 से। रात्रि 9:30 पर सुनेगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 11:00 से होंगे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, स्वर अनुराधा पोटवाल।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में सुनिए गीता दत्त की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है बाजी। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

की जवानी है, हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है, और जीने वाले होर भोले भले सोना ना।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। लीजिए अब सुनिए फिल्म आग से ये गीत। आवाज है शमशाद बेगम की, गीतकार हैं बेहजत लखनवी, संगीत दिया है राम गांगुली ने।

0: बजाई।
1: आज न काहे सखियन के संग हिलमिल रात रचाई,
0: हिलमिल रात रचाई।

0: भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः उत्तर प्रदेशे मध्य प्रदेशे विदर्भ प्रदेशे च उष्णतरंगा तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ तटीय आंध्र प्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा चक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33,200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40,100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। स्वीकार कीजिए ऋचा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, धैर्य को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। जो मनुष्य धैर्यशील होता है उसे निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यह हम सभी ने सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है और ये वाक्य पूर्णता सत्य भी है। जब हम अपनी कोई खोई हुई किसी वस्तु को ढूंढते हैं और यदि हमारा मस्तिष्क विचलित है तो उस समय वस्तु हमारे सामने होती हुई भी हमें हड़बड़ी में दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हम अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखते हुए किसी चीज़ या किसी वस्तु को ढूंढते हैं तो वो हमें आसानी से मिल सकती है, क्योंकि उस वक्त हमारा मन स्थिर है। कोयले की खदान से हीरा वही ढूंढ सकता है जो धैर्यवान है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। उनका दल नगर कस्बा गांव भ्रमण करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जब वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, इसी बीच एक नदी पड़ी जिसे पार कर जंगल से बाहर निकलते ही संत ने अपने एक शिष्य से कहा कि वत्स, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए नदी से जल भर लाओ। वो शिष्य तत्परता से एक घड़ा लेकर चला गया। थोड़ी ही देर में वो शिष्य खाली हाथ वापस लौट आया और बोला कि वो जल आपके पीने योग्य नहीं है। संत ने कहा कि अभी हम उसी मार्ग से आए हैं, तब तो वो जल अशुद्ध नहीं था। इस पर शिष्य ने उत्तर दिया कि अभी तो वो नदी पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। कुछ देर बाद संत ने अपने एक दूसरे शिष्य से कहा कि मेरे लिए अब नदी से जल लेकर आओ। वो शिष्य घड़ा लेकर तुरंत ही चल पड़ा। कुछ विलंब के बाद वो शिष्य वापस आया और साफ जल से भरा हुआ घड़ा ले आया और संत को दे दिया। जल पीकर संत ने पूछा, क्या तुम कहीं और से जल ले आए हो? उस शिष्य ने कहा, नहीं, ये जल उसी नदी का है। उस नदी के पानी में मिट्टी घुल गई थी, मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और जब मिट्टी नीचे बैठ गई तब मैं स्वच्छ जल घड़ी में भर कर ले आया। उस शिष्य की बात सुनकर संत ने कहा कि मैंने पशुओं के एक झुंड को नदी की दिशा में जाते हुए देख लिया था, इसलिए धैर्य के महत्व को समझाने के लिए मैंने जल की इच्छा प्रकट की। पहले शिष्य को नदी का जल पीने योग्य नहीं लगा क्योंकि पशुओं के द्वारा नदी पार करने से जल में मिट्टी घुल गई थी। ये जल उसी नदी से लाया गया है पर अब ये पूरी तरह स्वच्छ है और पीने योग्य है। पहले शिष्य ने धैर्य से काम नहीं लिया इसलिए जल को गंदा समझकर छोड़ दिया। दूसरे शिष्य ने धैर्य से मिट्टी बैठने की प्रतीक्षा की और इच्छित वस्तु को पा लिया। यही अंतर है धैर्य और अधीरता में। व्यक्ति सामने उपलब्ध वस्तु को भी ठुकरा देता है जिसकी उसे आवश्यकता है, वही धैर्यवान सही समय की प्रतीक्षा करता है और सफलता को प्राप्त करता है।

0: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है। News on AIR।
2: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय है दुग्ध फैट बढ़ने के उपाय, विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा।
3: जो लोग समितियों में दूध दे रहे हैं, दुग्ध समितियों में, वो दुग्ध समितियों में जो दूध का उनका खरीदने का तरीका है वो फैट के ऊपर निर्भर रहता है। फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा उसका दूध की कीमत ज्यादा मिलती है, और जिसमें फैट परसेंटेज कम होता है उसमें दूध की कीमत घट जाती है। तो हम आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बिना किसी लागत के, बिना दाने में परिवर्तन किए, बिना अतिरिक्त दवा दिए, कैसे हम फैट परसेंटेज को बढ़ाएं और अधिक कीमत से अब हमारा दूध बिके। तो इसके लिए हम आपको दो तीन उपाय बताएंगे कि सामान्य तौर पे पशुपालक क्या करता है कि जब वो गाय लगाने के लिए बैठता है तो बछड़ा छोड़ता है, और शुरू में पाना छोड़ने के लिए बछड़े को छोड़ा और उसके बाद उसने दूध लगाया। दूध लगाने के बाद फिर थोड़ा बहुत दूध बछड़े के लिए बाद में छोड़ देता है, बाकी का दूध लगा लेता है। हम पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि जो फैट है, फैट पानी से हल्का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फैट पानी के ऊपर रहेगा। जब गाय के थन के अंदर, अडर के अंदर दूध भरा होता है तो फैट सबसे ऊपर होता है। जब आप गाय को लगाना शुरू करते हो, जैसे किसी की 4 लीटर की गाय है और या भैंस है, तो उसने 3 लीटर दूध जब लगाया पाड़ा पाड़ी छोड़ने के बाद, और उसके बाद आधा लीटर जो आखिरी का पाड़ा पाड़ी को छोड़ा, उसी में तो फैट ज़्यादा था जो आपने छोड़ दिया। इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि जब भी व्यक्ति जो लगाने वाला है वो गाय या भैंस लगाने बैठता है बाल्टी में, तो आखिरी में आप देखते हो लास्ट में लगाते लगाते जो फैन बनता है वो आखिरी में बनता है, और फैन बनता है फैट के कारण। तो ये भी निश्चित हो गया है कि फैट आखिरी में ही निकलता है, और आखिरी में जो फैट निकलता है वो आप अपने पाड़ा पाड़ी को छोड़ देते हो। तो आधा लीटर यदि आपने या 1 लीटर अपनी पाड़ा पाड़ी को छोड़ा जिसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, आपको दो उपाय करने हैं। या तो आप पाड़ा पाड़ी को जो पहले छोड़ते हैं पाना छोड़ने के लिए गाय लगाने के पहले, तो अगर आप 2 मिनट को छोड़ रहे हैं तो 3-4 मिनट को छोड़ दो, जितना पिलाना है पहले ही पिला लें, बाद में पूरा दूध लगा लें, तब आप देखेंगे कि आपके दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा आया। दूसरा उपाय हम ये भी कर सकते हैं कि यदि आपको लिमिट नहीं मालूम है कि आज गाय या भैंस कितना दूध देगी, तो हम छोड़ने की में थोड़ी सी असमर्थता हो जाती है कि कहाँ छोड़ना है, कितना छोड़ना है। इसके लिए मैं दूसरा उपाय ये बताता हूँ कि आपने बछड़ा छोड़ा या पाड़ा पाड़ी को छोड़ा, भैंस आपने पाना छोड़ दिया, आप लगाने बैठ गए, आप ड्रॉप ड्रॉप करके पूरी भैंस लगा लीजिए, बिल्कुल ना छोड़ें भैंस में दूध। उसके बाद आपको यदि पाड़ा पाड़ी को दूध पिलाना है, जो आपने लगाया है बाल्टी में उसमें से आधा लीटर अलग से पिला दें। क्या होगा, आप देखेंगे कि लास्ट में जो फैट वाला दूध था वो आप पाड़ा पाड़ी को दे रहे थे, आपके दूध में फैट आ ही नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से यदि आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे, उसी दिन देख सकते हैं आप। तो जिनके पास लैक्टोमीटर है, फैट जांचने की मशीन है, आप अगर 4 लीटर वाली भैंस को लगाते हैं, शुरू का 3 लीटर लगा के उसमें फैट देख लीजिए, आखिरी का 1 लीटर लगा के उसमें फैट देख लीजिए। तो उसमें जब फैट बढ़ जाएगा तो जो दुग्ध समितियों को जो फैट के बेस पर दूध खरीद रहे हैं निश्चित रूप से उचित पैसा मिलेगा। दूसरा एक और चीज़ होती है कि यदि आप बछड़े को या पाड़ा पाड़ी को लगाने के बाद नहीं छोड़ेंगे तो एक लाभ और मिलेगा, क्योंकि क्या होता है जब पाड़ा पाड़ी बाद में जब आप दूध कम छोड़ते हो तो बार बार थनों में सिर मार मार के उसमें इंजरी पैदा करता है, मैस्टाइटिस रोग की संभावना ज़्यादा हो जाती है, दांतों से उनके थनों में जख्म भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश करता है कि मिल जाए और आपने छोड़ा नहीं है तो वो प्रयास करता रहता है, इससे अडर को नुकसान होता है। एक तो ये फायदा मिलेगा, दूसरा ये फायदा मिलेगा कि आपके दूध में फैट की सही मात्रा मिल जाएगी। दूसरा एक और लाभ जो है कि आखिरी का यदि आधा और एक लीटर दूध आपने बछड़े को जो छोड़ा है उसमें फैट बहुत ज़्यादा था, तो हम सोचते हैं कि हमने अपनी बछिया को एक लीटर दूध छोड़ा, जबकि वो दो या तीन लीटर दूध के बराबर होता है फैट के अनुसार। और इसी कारण उसमें आप देखते हैं कई बार बछड़ों में सफ़ेद कलर के दस्त शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको पचा नहीं पाता, ज़्यादा फैट वाला है। यदि आप उसको पानी में ला के बाहर से जब देंगे तो ये संभावना भी, जो काफ स्कोर के कारण, डायरिया के कारण पशु मृत्यु हो रही थी, काफ मोर्टिलिटी बढ़ रही थी, उस पर भी रोक लग जाएगी।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से समिट इवेंट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम भोपाल में होने वाले इस प्री समिट इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शासन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में संरचित संवाद, अनुभव साझाकरण और सहयोगात्मक आदान

0: का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के फील्ड अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के लिए आवास, आरोग्य और जन कल्याण के प्रभावी कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को पाडुना के ग्राम आमला में आयोजित जनजातीय समुदाय से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से निर्मित हो रही सड़कें नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने में सहयोगी हैं। इनसे दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों भोपाल और इंदौर उज्जैन की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों से लाभान्वित होंगे। इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन बन जाने से ये संपूर्ण क्षेत्र विकास के नए आयाम को स्पर्श करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों के विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। खजुराहो में 47.4 डिग्री, नौगांव में 46 डिग्री और मंडला में 45.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पंखे और ग्रीन नेट भी लगाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल आयोजित किसानों की समस्याओं संबंधी बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि उद्वहन सिंचाई योजना से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। आगर मालवा में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से संचालित 4 कृषि रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसत ने जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे और बांद्रा टर्मिनल जाने स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को आगामी 24 मई से नियमित ट्रेन का दर्जा देने नोटिफिकेशन जारी किया है। निंदौरी में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। गुना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर कलेक्टर रिजू वाफना की अध्यक्षता में कल जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 102.3।

शिमला 6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में सुनिए यशुदास की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम है सुनैना। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हिंदुस्तान रेडियो मित्र टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रीतेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान ने। इसी गीत को पसंद किया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पनवार, वेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, अलमास बानो, मोइन शंकर लाल, वनीता और मोहम्मद हसनैन ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और दुबेहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और परांजल राय ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में। अगली फरमाइश हमें भेजी है साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी ने। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी ने इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख ने इसी गीत को पसंद किया है। उबरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज फरदीन, सुहान अरजान, अबान अब्बासी ने। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म बातों बातों में से ये गीत। आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। अगली फरमाइश हमें भेजी है नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहवानकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरेकर ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी ने इसी गीत को पसंद किया है। पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी शालिनी, वाणी जीवन सह ने। और निवासा महाराष्ट्र से माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट ने। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और बेबी प्रियांशी ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से गीत, आवाज़ है कुमार सानू की, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

अगली फरमाइश हमें भेजी है फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण से, गिल, दलजीत से हैं, राजदीप से हैं, गुरलाल से हैं, अविराज पोत्रे गुरनूर से हैं और शुभदीप से हैं, छत्तीसगढ़ सरगावजा से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद ने, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने, ग्राम पीपर लोड छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म जब वी मेट से ये गीत। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना, कोई 8 दिन के अंदर ही जमीन का सौदा तय कर लिया। जमीन पर ना तो कोई मकान था ना कोई पेड़। जमीन के हक में नदी का किनारा और एकांत, ये 2 बड़ी सिफारिशें थीं। हमने तंबुओं में रहने का निश्चय किया और सोचा कि रसोई घर के लिए टीन का एक काम चलाऊ छप्पर बांध लेंगे और धीरे धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देंगे। इस समय आश्रम की बस्ती बढ़ गई थी। लगभग 40 छोटे बड़े स्त्री पुरुष थे। सुविधा ये थी कि सब एक ही रसोई घर में खाते थे। योजना की कल्पना मेरी थी, उसे अमली रूप देने का बोझ उठाने वाले तो नियमानुसार स्वर्गीय मगनलाल गांधी ही थे। स्थायी मकान बनाने से पहले की कठिनाइयों का पार न था। बारिश का मौसम सामने था, सामान सब 4 मील दूर शहर से लाना होता था। इस निर्जन भूमि में सांप आदि हिंसक जीव तो थे ही। ऐसी स्थिति में बालकों की सार संभाल का खतरा मामूली नहीं था। रिवाज ये था कि सर्पादि को मारा ना जाए, लेकिन उनके भय से मुक्त तो हम में से कोई न था, आज भी नहीं है। और अब इससे आगे, फीनिक्स टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम, तीनों जगहों में हिंसक जीवों को ना मारने का नियम यथाशक्ति पालन किया गया। तीनों जगहों में निर्जन जमीनें बसानी पड़ी थी। कहना होगा कि तीनों स्थानों में सर्पादि का उपद्रव काफी था, जिस पर भी आज तक एक भी जान खोनी नहीं पड़ी। इसमें मेरे समान श्रद्धालुओं को तो ईश्वर के हाथ का, उसकी कृपा का ही दर्शन होता है। कोई ये निरर्थक शंका ना उठाए कि ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। मनुष्य के दैनिक कामों में दखल देने के लिए वो बेकार नहीं बैठा है। मैं इस चीज को, इस अनुभव को दूसरी भाषा में रखना नहीं जानता। ईश्वर की कृति को लौकिक भाषा में प्रकट करते हुए भी मैं जानता हूं कि उसका कार्य अवर्णनीय है, किंतु यदि पामर मनुष्य वर्णन करने बैठें तो उसके पास अपनी तोतली बोली ही हो सकती है। साधारणतया सर्पादि को न मानने पर भी आश्रम समाज के 25 वर्ष तक बचे रहने को संयोग मानने के बदले ईश्वर की कृपा मानना आदि वहम हो तो वो वहम भी बनाए रखने जैसा है। जब मजदूरों की हड़ताल हुई तब आश्रम की नींव पड़ रही थी। आश्रम की प्रधान प्रवृत्ति बुनाई काम की थी। कातने की तो अभी हम खोज ही नहीं कर पाए थे, इसलिए पहले बुनाई घर बनाने का निश्चय किया था। इससे उसकी नींव चुनी जा रही थी। मजदूरों ने शुरू के 2 हफ्तों में खूब हिम्मत दिखाई, शांति भी खूब रखी।

की। प्रतिदिन की सभाओं में वे बड़ी संख्या में उपस्थित भी रहे। प्रतिज्ञा का स्मरण मैं रोज उन्हें कराता ही था। वे रोज पुकार पुकार कर कहते थे, हम मर मिटेंगे पर अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे। लेकिन आखिर वे कमजोर पड़ते जान पड़े, और जिस प्रकार कमजोर आदमी हिंसक होता है, उसी प्रकार उनमें जो कमजोर पड़े वे मिल में जाने वालों का द्वेष करने लगे, और मुझे डर मालूम हुआ कि कहीं वे किसी के साथ जबरदस्ती ना कर बैठें। रोज की सभा में लोगों की उपस्थिति कम पड़ने लगी। आने वालों के चेहरों पर उदासीनता छाई रहती थी। मुझे खबर मिली कि मजदूर डगमगाने लगे हैं। मैं परेशान हुआ, ये सोचने लगा कि ऐसे समय में मेरा धर्म क्या हो सकता है। मुझे दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों की हड़ताल का अनुभव था, पर यह अनुभव नया था। जिस प्रतिज्ञा के करने में मेरी प्रेरणा थी, जिसका मैं प्रतिदिन साक्षी बनता था, वो प्रतिज्ञा कैसे टूट सकती है? इस प्रतिज्ञा को आप चाहे मेरा अभिमान कह लीजिए, अथवा मजदूरों और सत्य के प्रति मेरा प्रेम कह लीजिए। सवेरे का समय था, मैं सभा में बैठा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु सभा में ही मेरे मुंह से निकल गया, यदि मजदूर फिर से दृढ़ ना बने और फैसला होने तक हड़ताल चला न सके तो मैं तब तक के लिए उपवास करूंगा। जो मजदूर हाजिर थे वे सब हक्के बक्के रह गए। अनसुईया बहन की आंखों से आंसू की धारा बह चली। मजदूर बोल उठे, आप नहीं, हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करना चाहिए, हमें माफ कीजिए, हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैंने कहा, आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो यही बस है कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हमारे पास पैसा नहीं है, हम मजदूरों को भीख का अन्न खिलाकर हड़ताल नहीं करना चाहते। आप कुछ मजदूरी कीजिए और उससे अपनी रोजी की रोटी के लायक पैसा कमा लीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर हड़ताल कितने ही दिन क्यों ना चले, आप निश्चिंत रह सकेंगे। मेरा उपवास तो अब फैसले से पहले ना छूटेगा। वल्लभ भाई पटेल म्यूनिसिपलिटी में काम खोज रहे थे, पर वहां कुछ काम मिलने की संभावना ना थी। आश्रम की बुनाई शाला में रेत का भराव करने की जरूरत थी। मंगललाल गांधी ने मुझे सुझाया कि इस काम में बहुत से मजदूर लगाए जा सकते हैं। मजदूर इसे करने को तैयार हो गए। अनसुईया बहन ने पहले टोकरी उठाई और नदी में रेत की टोकरियां ढोने वाले मजदूरों की एक कतार खड़ी हो गई। वो दृश्य देखने योग्य था। मजदूरों में नया बल आ गया। उन्हें पैसे चुकाने वाले चुकाते चुकाते थक गए। इस उपवास में एक दोष था। मैं ऊपर लिख चुका हूं कि मालिकों के साथ मेरा मीठा संबंध था, इसलिए उन पर उपवास का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता था। मैं तो जानता ही था कि सत्याग्रही के नाते मैं उनके विरुद्ध उपवास कर ही नहीं सकता। उन पर कोई प्रभाव पड़े तो वो मजदूरों की हड़ताल का ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित उनके दोषों के लिए नहीं था, मजदूरों के दोष के निमित्त से था। मैं मजदूरों का प्रतिनिधि था, इसलिए उनके दोषों से मैं दोषित होता था। मालिकों से तो मैं केवल विनीति कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना उन पर जाति करने के समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे उपवास का प्रभाव उन पर पड़े बिना रहेगा ही नहीं। प्रभाव पड़ा भी, किंतु मैं अपने उपवास को रोक नहीं सकता था। मैंने स्पष्ट देखा कि ऐसा दोषमय उपवास करना मेरा धर्म है। तो अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन, और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए संदेश।
1: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभाव, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: कल्याण।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर

0: पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में सुनिए राधा खरे के स्वर में ये देवी गीत।

0: अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में। लीजिए अब सुनिए लल्लू राम कुशवाहा के स्वर में चेतावनी गीत।

0: महीना लागे बेलतल में नौ महीना लागे।
1: जब सुनिए शकुंतला कुशवाहा के स्वर में ये लोकगीत।

0: इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे रूपक कलरव, आलेख मनोज पारसर, प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की है। लेकिन पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: लीजिए प्रस्तुत है रूपक कलरव।
2: हमारा संसार अद्भुत है, विविधताओं का अनूठा समागम है। घरों में हमारे बच्चों का चहकना और वन उपवन में पक्षियों की चहचहाहट एक समान ही लुभावनी होती है। अगर ये कहा जाए कि ईश्वर द्वारा बनाई इस सृष्टि में सबसे अनुपम व अनमोल उपहार हमारी पक्षियों की दुनिया है तो कहना गलत नहीं होगा। पक्षी मानव मित्र होने के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतने महत्वपूर्ण होने पर भी हम में से अधिकांश लोग पक्षियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। पंखों वाले द्विपाद को हम पक्षी कहते हैं। जीव विज्ञानियों का मानना है कि ये सरीसृपों यानी रेप्टाइल से विकसित हुए हैं। इनकी दृष्टि एवं श्रवण शक्ति अत्यंत विकसित होती है। विश्व भर में लगभग 8600 पक्षी पाए जाते हैं।

0: पक्षियों संबंधी जैव विविधता बायोडायवर्सिटीज पर बात करने से पहले आइए बात करें जैव विविधता की। जैव विविधता या जीवों की विविधता का संबंध पृथ्वी के जीवों लाइफ फॉर्म से है। इनमें करोड़ों पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, इन सब के जीन और जटिल पारिस्थितिकी प्रणालियां शामिल है जिसके ये सब हिस्से हैं। जैव विविधता को हम तीन स्तरों पर समझने का प्रयास करते हैं, आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, प्रजाति जैव विविधता स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और पारिस्थितिकी प्रणाली की जैव विविधता इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। आइए पक्षियों में जैव विविधता को लेकर बात करते हैं शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विषय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर आर डी श्रीवास्तव से।
1: पक्षी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ऑर्निस तथा लैटिन भाषा के एविस से लिया गया है। स्तनधारियों के ही समान अत्यधिक विकसित ये क्रेमोएट्स हैं। कुछ विशेष ग्रहों में से इनमें जो प्रमुख हैं वो इनकी त्वचा पर फेदर्स यानी पिच्छों का पाया जाना, इनके मुख में यानी बक्कल कैविटी में किसी प्रकार के दांत नहीं होते, डाल को पकड़कर अपने पैरों पंजों से सो जाते हैं। इस डाल को पकड़ने की प्रक्रिया को हम पर्चिंग नाम देते हैं, पर्चिंग प्रक्रिया कहते हैं। इनका कंकाल, इनकी बहुत बड़ी विशेषता कि पक्षी उड़ते किस प्रकार से हैं, इतने भारी होने के बावजूद भी पक्षी उड़ते हैं क्योंकि इनका कंकाल न्यूमेटिक होता है, अर्थात इनके कंकाल में जगह जगह एयर कैविटीज होती हैं जिनमें एयर भरी रहती है। इस कारण से उनका स्केलेटन बहुत हल्का हो जाता है, न्यूमेटिक हो जाता है, अर्थात इस कारण से ये आसानी से उड़ जाती है। वैसे तो जो पक्षी आज ये विशेषकर लुप्त प्राय हो गए हैं उनको हमने एक सब क्लास आर्कियोरनिथीज में रखा था। बाद में जो पक्षी हैं, जो आदमी पक्षी हैं, उनको भी हमने दो वर्गों में रखा है, एक कहलाते हैं नियोरनिथीस और दूसरे कहलाते हैं कैरिनिटी। नियोरनिथीस में ये सारे जीवित प्राणी हैं और जो रेटिटी में, मतलब इनमें विशेष अंतर ये है कि जो नियोरनिथीस हैं ये उड़ने वाले पक्षी हैं,

0: और जो रेटिटी जो है ये उल नहीं सकते।
1: शिवपुरी जिला दक्षिण में मालवा पठार के सीमांत, पूर्व में बुंदेलखंड को स्पर्श करता हुआ विंध्याचल की पर्वतमालाओं पर 24.50 डिग्री से 25.55 डिग्री अक्षांश एवं 75.45 डिग्री से 78.30 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यहाँ की हरी भरी घाटियां और पक्षियों का वैविध्य नयनाभिराम है और कलरव श्रवणीय है। शिवपुरी में हम पक्षियों में जैव विविधता को लेकर इन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो वो जो स्थानीय हैं और दूसरे वो जो प्रवासी होते हैं। कुछ पक्षी जल में रहते हैं या पानी के किनारे मिलते हैं तो कुछ पेड़ों पर रहा करते हैं। चांदपाठा झील, भदैया कुंड, टुंडा भरखा, माधव राष्ट्रीय उद्यान ऐसे स्थल हैं जो शिवपुरी में पक्षियों के आश्रय स्थल माने जाते हैं। आइए इस संबंध में और जानकारी प्राप्त करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के श्री आलोक कुमार से।
2: पक्षियों की जैव विविधता की दृष्टि से शिवपुरी जिला पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल है। लगभग 250 से 300 प्रकार के पक्षी शिवपुरी जिले के जलाशयों में एवं शिवपुरी जिले के आसपास के क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इनमें बहुतायत में प्रवासी पक्षी भी शिवपुरी जिले में आते हैं। प्रवासी पक्षी मुख्यतः ये ठंड के समय नवंबर के अंत में से इनका आगमन प्रारंभ हो जाता है और लगभग ये फरवरी माह तक ये जिले के जलाशयों में रहते हैं। मार्च से ये पुनः अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। मुख्य रूप से प्रवासी पक्षी बहुत अधिक ठंडे प्रदेशों से आते हैं, विशेष करके लद्दाख है, रसिया है, यूक्रेन है, साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है, ऐसे प्रदेशों से इनका आगमन होता है। उस समय वहाँ अत्यधिक ठंड रहती है, साइबेरिया से भी आते हैं, तो ये इतनी दूरस्थ हजारों किलोमीटर चल के और अपने भारत में और विशेष करके मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में इनका आगमन होता है। भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी देसी पक्षी यहाँ पाए जाते हैं।
1: यहाँ के पक्षियों में तोता, मैना, कटफोड़वा, बुलबुल, दूधराज, मोर, कौए, कोयल और पानी के अनेक पक्षी हैं। सारस क्रेन सबसे बड़ा पक्षी, जबकि टिकेल्स फ्लावर सबसे छोटी चिड़िया है। सबसे अच्छा गाने वाली चिड़िया बुलबुल थ्रस शमा है, तो सबसे अच्छा बोलने वाली चिड़िया पहाड़ी मैना और टुइया तोता है। कुछ पक्षी जैसे जंगली मुर्गी, टिटहरी, सोन चिड़िया अपने अंडे जमीन पर देते हैं, तो कई पक्षियों का घोंसला मिट्टी में बनी गुफा या पेड़ पर बने छेदों में होता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बया पक्षी का घोंसला सबसे सुंदर होता है। शिवपुरी में पक्षियों की दुनिया के बारे में और जानकारी दे रहे हैं श्री MB सिरसैया।
3: इसमें खास बात यह कि हमारे शिवपुरी में वाटर बॉडी काफी अच्छी है, यानी पानी के संबंध में यदि हम कहें तो पक्षियों के लिए बहुत अच्छा स्थान है। दो तरह की लेक हमारे इस पार्क में हैं, जैसे साख्या सागर और माधव सागर। अभी भी देखें तो जो चकवा चकवी कहते हैं वो भी अभी भी मौजूद हैं। आईबीस मौजूद है, सिल्वर स्टॉक मौजूद है, स्पूनबिल मौजूद है। और यहाँ जो सबसे अच्छी बात है कि स्टेट बर्ड जो हमारा है दूधराज, वो भी यहाँ है। ये अपने लिए गर्व की बात है, उसके खुद मैंने पिक्चर लिए हैं और उसके नेस्टिंग भी यहाँ हो रही है। इसका मतलब यह है कि बर्ड्स के लिए हैबिटेट बहुत अच्छा है। खास बात यह है कि किंग वल्चर, जिसकी कमी आ रही थी, वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, उनकी नेस्टिंग यहाँ हो रही है। और 30-30, 50-50 के झुंड में मैंने उसके खुद फोटोग्राफ्स लिए हैं, यानी कोई कहे कि प्रमाण नहीं है तो प्रमाण आज मेरे पास मौजूद है।
1: बगला परिवार इग्रेट फैमिली के पक्षी लंबी टांगों वाले तथा लचीली गर्दन वाले पक्षी होते हैं। इनकी चोंच लंबी, सीधी और नुकीली होती है। सामान्यतः नर और मादा एक जैसे होते हैं, केवल प्रजनन काल में नर एवं मादा में विशेष प्रकार के पंख उगाते हैं, जैसे कि कैटल इग्रेट, स्मॉल इग्रेट, मेडियन इग्रेट और लार्ज इग्रेट। डाइवर्स फैमिली के पक्षी पानी में रहने वाले होते हैं। इनके पंख छोटे होते हैं। प्रजनन काल में नर एवं मादा अलग अलग रूप में दिखते हैं। घोंसला पानी में तैरती हुई वनस्पति पर बनाया जाता है, जैसे लिटिल ग्रेप

0: कॉमन टील, कॉटन टील, विस्लिंग टील, ब्राह्मणी डक, पेन टेल, शवेल रस, पोचार्स वार हेडेड गीस। आइए बात करते हैं शासकीय एसएमएस महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार जैन से।
1: यदि पक्षियों को हमको जीवित रखना है तो हमको प्रकृति का मतलब पालन करना पड़ेगा, और उसका पालन इस तरह से हम करेंगे कि मतलब प्रदूषण रहित बनाए वातावरण को, जिससे कि मतलब बरसात अच्छी हो, जंगल ना काटें, क्योंकि जंगलों पर और पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा होता है।
0: कॉर्मोरेंट एवं डार्टर परिवार के पक्षी झुंडों में रहने वाले मछली खोर होते हैं। ये झीलों, नदियों, तालाबों के किनारे आसानी से देखे जा सकते हैं। इनका रंग काला तथा चोंच लंबी, पतली और नुकीली होती है। कॉर्मोरेंट में चोंच आगे से मुड़ी हुई और डार्टर में छुरी के मानिंद होती है। गर्दन लंबी, शरीर शंकुकार, पूंछ लंबी एवं कड़क होती है। इनके पंख ज्यादा घने नहीं होते एवं वाटरप्रूफ भी नहीं होते। पानी में एक बार भीगने के बाद इन्हें पेड़ों और टहनियों पर पंख फैलाए सुखाते हुए देखा जा सकता है। रात्रि में सक्रिय रहने वाले शिकारी पक्षी उल्लू, दिन में सक्रिय रहने वाले शिकारी पक्षी चील और गिद्ध होते हैं, जो ऊंचाई पर गर्म हवाओं की धाराओं के सहारे बिना पंख फड़फड़ाए काफी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। क्रस्टेड सरपेंट ईगल, फिशिंग ईगल इस परिवार के सदस्य हैं। भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी होता है सारस यानी क्रेन। ये लंबी टांगों वाला वृहदाकार पक्षी होता है। नर एवं मादा एक जैसे दिखते हैं और जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। इनका प्रणय नृत्य बड़ा ही मनोहारी होता है। सारस व डेमोसिल क्रेन इस परिवार के सदस्य हैं। सारस जैसी लंबी टांगों वाले पक्षियों का एक परिवार और भी है, जिसे स्टार्क फैमिली कहते हैं। ये पक्षी जमीन या दलदली इलाकों में आसानी से देखे जा सकते हैं। पेंटेड स्टार्क, व्हाइट स्टार्क, ब्लैक नेक स्टार्क इस परिवार के सदस्य हैं। पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी होता है मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी कुछ प्रजातियां पेड़ों पर भी बसेरा करती हैं। शिवपुरी कभी स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। यहाँ का मौसम ग्रीष्मकाल में भी शीतलता का एहसास लिए रहता था। कारण था घने वृक्षों से घिरे जंगल और यहाँ की नीलम घाटियां जलवायु में ठंडक बनाए रखती थी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से आज शिवपुरी भी अछूता नहीं है। तालाब, सरोवर, नदियां, कुंड आज सब सूख चले हैं। इंसानों को तो पानी का अभाव है ही, बेचारे पक्षी भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। आइए बात करते हैं सेवानिवृत्त रेंजर श्री जीपी शर्मा से।
2: मेरे को 48 से और आज तक करीब करीब शिवपुरी में रहा हूँ मैं। क्योंकि मध्य भारत की स्टेट की राजधानी जो है वो 3-4 मतलब मार्च के बाद जो है वो शिवपुरी में आ जाती थी। यहाँ कश्मीरी डक्स आती हैं, छोटे छोटे कलर्ड वर्ड्स आते हैं। अब देखने में गर्मी के कारण जो है नहीं आते हैं। साइबेरियन डक जो है बिल्कुल आते हैं और यहाँ पर टाइम से आते हैं और टाइम से ब्रेक हो के चले जाते हैं।
0: ग्वालियर के घाटी गांव और शिवपुरी क्षेत्र के करेरा के आसपास हमें तलाश है लुप्त प्राय पक्षी सोन चिरैया की। ऐसे पक्षी जो निरंतर लुप्त हो रहे हैं, हमारा प्रयास है कि इनका संरक्षण हो और संवर्धन हो। श्री आलोक कुमार हमें बताते हैं।
1: प्राकृतिक जल स्रोत हुआ करते थे, वन क्षेत्र में भी कई सारे प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। और जैसा आप जानते हैं कि पक्षियों के, अच्छे पक्षियों के रहवास के लिए पानी की, सभी जगहों पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे फलदार पेड़ होने चाहिए, ये पक्षियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान भी बढ़ा है। पहले जहाँ टेम्परेचर यहाँ का 45-40 हुआ करता था, अभी टेम्परेचर 47-48 से ऊपर जा रहा है। इसका सीधा असर पक्षियों के ऊपर भी पड़ रहा है। शिवपुरी जिले का करेरा अभयारण्य सोन चिड़िया के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था और अभी भी

0: शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र में सोन चिड़िया के यदा कदा आगमन के या उनके देखे जाने के संकेत या सूचनाएं मिल रही है। इसके अलावा पास के ग्वालियर जिले के घाटी गांव में भी सोन चिड़िया देखा जा रहा है। जो वन क्षेत्र का जो घनत्व हुआ करता था, आज के परिप्रेक्ष्य में उसमें कमी आई है। जहाँ तक पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन का प्रश्न है, तो इसके लिए जगह जगह पे फलदार वृक्षों का रोपण किया जाना, फलदार वृक्षों को संरक्षित किया जाना, पक्षियों के घोंसला बनाने के लिए जो वृक्ष सूख जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको भी हमको रखना चाहिए। उसे पक्षी विश्राम करते हैं, पक्षी उस पर बैठना पसंद करते हैं। तो फलदार वृक्षों की व्यवस्था, पक्षियों के लिए ठूंठों की व्यवस्था, और साथ ही सभी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पक्षी रहेंगे तो शाकाहारी वन्य प्राणी रहेंगे, तो मांसाहारी वन्य प्राणी रहेंगे, तो आदमी रहेगा। ये जैव विविधता के सब पार्ट हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। सबका रहना महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण आदमी का इस धरती पर रहना है, उतना ही महत्वपूर्ण पक्षियों का इस धरती पर रहना, शाकाहारी वन्य प्राणियों का इस धरती पर रहना, जानवरों का, मांसाहारी वन्य प्राणियों का इस धरती पर रहना जरूरी है।
1: जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, रात्रिचर पक्षियों में सबसे ज्यादा शिकारी एवं चालाक पक्षी है उल्लू। ये वृक्षों के कोटर या सुराखों में रहते हैं। स्पॉटेड आउलेट, ग्रेट हॉर्न आउल, बार्न आउल इसकी मुख्य प्रजातियां होती हैं। आइए और चर्चा करते हैं प्राणी विज्ञान के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर आर.डी. श्रीवास्तव से।
2: किसी विशेष जंतु समूह अथवा समूह के कुछ भाग के जनन एवं नेस्टिंग स्थानों से पोषण एवं विश्रामा स्थल की ओर आने वाले स्थानांतरण पक्षी माइग्रेटेड बर्ड्स कहलाती हैं। जैसे ये स्थानांतरण किस हेतु होता है? इसका कारण है कि ये स्थानांतरण जनन हेतु भी हो सकता है। वास्तव में ये विशेष पक्षी समूह जो कि जिनको कि हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, इनका ये गुण प्रवसन कहलाता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हजारों मील की दूरी तय करके पहुंच जाते हैं। कुछ प्रवसन पक्षी इस प्रकार हैं, जैसे कॉमन पक्षियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोयल बसंत ऋतु में उत्तरी मैदानों में आ जाती है, ये यहाँ अंडे देती है, ग्रीष्म काल व्यतीत करती है, तत्पश्चात शरद ऋतु के आगमन पर ये मद्रास तथा श्रीलंका की ओर चली जाती है। खनन पक्षी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैग टेल्स, शरद ऋतु व्यतीत करने के लिए भारत आते हैं, और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही साइबेरिया एवं संचूरिया प्रदेशों को चले जाते हैं और लगभग 2500 मील की दूरी तय करते हैं। इसी प्रकार छोटा लालगिरी तिहारी, जिसे हम शो वेलर और चेती, जिसे हम अंग्रेजी में टील कहते हैं, और लाल चोंच वाली रेड क्रेस्टेड पोकार्ड इत्यादि केवल शरद ऋतु में ही भारत में दृष्टिगत होती हैं तथा ग्रीष्मकाल में अन्य स्थानों में चली जाती हैं।
1: पारिस्थितिकी तंत्र हो या हमारा जीवन तंत्र, सभी जगह पक्षी हर तरह से हमारे मित्र सिद्ध होते हैं। प्रेमी का संदेश प्रेमिका तक पहुंचाने वाला कबूतर, प्रेमिका के मनोभावों को समझने वाला तोता, हमारी बातों की हूबहू नकल करने वाला तोता कितना सुंदर पक्षी होता है। सामान्यतः तोते को लोग अंग्रेजी में पैरेट कहते हैं, किंतु ये पूरी तरह सही नहीं है। भारत में मिलने वाले तोते पैराकीट हैं, ना कि पैरेट। पैरेट प्रजाति तो अब लुप्त हो चुकी है। रोज रिंग्ड पैराकीट, अलेक्जेंड्राइन पैराकीट इस परिवार के सदस्य हैं। कठफोड़वा मध्यम बड़े आकार का पक्षी है। पिग्गी वुडपिकर, येलो क्राउन्ड वुडपिकर, ब्लैक राउंड फ्लेम बैक वुडपिकर, व्हाइट नेक्ड वुडपिकर इसकी प्रमुख प्रजातियां होती हैं। साहित्य में भी पक्षियों का वर्णन जी भर के हुआ है। आइए शिवपुरी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही से बात करते हैं।
3: मैं सन 1962 में जब शिवपुरी आया था, तो आज जो शिवपुरी दिखाई देता है वैसा नहीं था। आबादी भी कम थी। मैं 12 नंबर कोठी में रहता था, जो अलग थलग सी थी, और इसलिए उसमें मुझे चिड़ियों का सहचर्य खूब मिला, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत घने पेड़ थे। हमारी कोठी की छत पर रोज शाम को लगभग 30-32 मोर आया करते थे। इस तरह से चिड़ियों से बड़ा निकट का संपर्क रहा। उनकी जो बोली है, उनका जो कलरव है, उसने हमारे लेखन को भी प्रभावित किया है। और कविता के अतिरिक्त भी जो कुछ मैंने लिखा है, उसमें मैं मानता हूँ कि उसमें जो लयात्मकता है, वो चिड़ियों की बोली की देन है। एक अवसर मुझे याद है कि जब एक घोंसले में से छोटे बच्चों की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पायल या घुंघरू बज रहे हों। तो मैंने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा तो दिखाई नहीं देता है, ये घुंघरू की या पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब मुझे अनामिका ने, मेरी पुत्री ने बताया कि ये घोंसले में से बच्चों की आवाज़ है। और उसी समय मैंने ये रचना उस आवाज़ को लेकर लिखी थी। शीर्षक है चिड़िया का बच्चा। किसी 3 साल की लड़की के पांवों की छोटी छोटी पायलों की रुझुनिया आवाज़ों की तरह उस घोंसले से आ रही थी आवाज़ें। किसी 3 साल की लड़की के पांवों की छोटी छोटी पायलों की रुझुनिया आवाज़ों की तरह उस घोंसले से आ रही थी आवाज़ें। अनामिका ने दिखाया घोंसला, घोंसले में चिड़िया के बच्चे, बच्चों की नूपुरी आवाज़ें। मैं भूल गया कविता गुनगुनाना, अफसोस नहीं हुआ।
1: मुंडेर पर कागा बोले तो किसी के आने का संकेत माना जाता है। कोयल अपनी कूक से सबका मन हर लेती है। नीलकंठ के दर्शन शुभ माने जाते हैं। हम तो बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया, पिता पुत्री का संबंध एक भावनात्मक बिंब। किसी भी हिंसक पशु को देखकर चिड़ियों का शोर सभी को सतर्क कर देता है। पक्षियों की पहचान करना भी एक अद्भुत प्रक्रिया है। कुछ पक्षियों को आकार, रंग और आवाज से पहचाना जाता है, तो कुछ पक्षियों को उनसे मिलते जुलते पक्षी की तुलना कर पहचाना जाता है। जनरल सर्वे ऑफ माधव नेशनल पार्क स्पेशल रेफरेंस बर्ड एंड मेवल्स पर शोध कार्य संपन्न किए हुए डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने हमें बताया,
4: पक्षियों की यहाँ पर और भी अच्छी जो है बहुतायत हो सकती है। और यहाँ सभी प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं, चाहे वो पैराडाइज फ्लाई कैचर हो, दूधराज जो हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी प्रदेश का पक्षी है, और सारस के अलावा तमाम विभिन्न प्रजातियों के विदेशी पक्षी भी जो है यहाँ पर अपना मैक्सिमम समय गुजारते हैं। और पक्षी प्रेक्षण के लिए भी शिपरी नेशनल पार्क एक बहुत अच्छा जो है नेशनल पार्क है। और यहाँ पे लगभग जो है माइग्रेटरी सीजन में 400 से लेके 4000 तक बार हेडेड गूज और क्रेंस देखे गए हैं। विशेषकर जब शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों में सूखा रहता है, उस समय इस स्थान पर पक्षियों की बाहर से आने की संख्या में काफ़ी इजाफा होता है। शिवपुरी स्थित माधव नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, जहां जंगली पशुओं के साथ साथ पक्षियों की भी बहुत अच्छी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स के आने का भी जो है बहुत अच्छे संकेत मिले हैं, और बड़े पैमाने पर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है इस नेशनल पार्क में जो है आती रही हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स में विशेषकर साइबेरिया और टुंड्रा रशियन एरिया से जो है बर्ड्स जो है शिपरी नेशनल पार्क आती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो साक्य सागर झील है, उसमें पानी की कभी कमी नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माइग्रेटरी बर्ड्स का यहाँ पर स्थायी रूप से आगमन होता रहा। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा रेजिडेंट बर्ड्स की भी बहुत अच्छी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मैंने रिसर्च के दौरान यहाँ पर विशेषकर डेमोइसेल क्रेंस और यूरेशियन क्रेंस के जो है आगमन और प्रस्थान की जो है काफ़ी समय स्टडी किया, और इन क्रेंस के यहाँ आने से ये सिद्ध होता है कि बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से शिवपुरी नेशनल पार्क बहुत अच्छा एरिया है।

एक सुंदर पक्षी है बसंत गौरी, जिसे हम बारबेट भी कहते हैं। ये छोटे मध्यम आकार का सुडौल पक्षी है। किंगफिशर के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे ही। इसे हिंदी में किलकिला कहते हैं। अधिकतर ये अकेले या जोड़े में देखे जा सकते हैं। इसके शरीर का रंग ऊपर की ओर चमकीला नीला, पेट की तरफ भूरा या सफेद होता है। इनका मुख्य आहार मछली या रेंगने वाले जीव हैं। इनकी कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कॉमन किंगफिशर, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर और पाइट किंगफिशर। पक्षियों की कई विशेषताएं होती हैं। ये स्तनपाई जीव यानी मैमल की तरह नियत तापी वार्म ब्लडेड जीव है। इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता। पक्षियों में पाए जाने वाला रंग उनके शरीर में पाए जाने वाले एक प्रकार के वर्णक पिगमेंट के कारण होता है, जिन्हें बायोक्रोम कहा जाता है। पक्षी हमारे अभिन्न मित्र हैं। आज जनमानस में इनके संरक्षण और संवर्धन के प्रति चेतना जागृत करने की महती आवश्यकता है, ताकि पक्षियों का ये सुंदर संसार अक्षुण्य रह सके। पक्षी हमारी प्रेरणा है, पक्षी हमारे मार्गदर्शक।

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक कलरव, आलेख मनोज पारसर, प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए संदेश।
1: हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ, संपर्क करें 07582472000।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या ज़रूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयाँ, औषधियाँ, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना ज़रूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायिनी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जैव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ, प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला ज़रूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं, पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना ज़रूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें, जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर।
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये अगला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के ज़माने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूज़िक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेऊन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखा।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: think.
1: सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ गया है। लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान भी लगभग 28 डिग्री तक पहुँच गया है। जानकारी के अनुसार जिले में वर्ष 2005 में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जाता है। भीषण गर्मी के बीच छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी है। विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह में सैटेलाइट के माध्यम से 1200 से अधिक फायर अलर्ट मिले, जिनमें 705 वन क्षेत्रों और 515 वन क्षेत्र के बाहर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन विभाग के उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि आग से लगभग 338 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 132 लोगों पर वन अपराध दर्ज किए गए हैं। विभाग ने बताया कि जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण महुआ संग्रहण के दौरान लगाई जाने वाली आग, नरवाई जलाना और लापरवाही से फेंकी गई जलती बीड़ी सिगरेट है। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में गेहूं उपार्जन, खाद वितरण और पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को ई टोकन उपार्जन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद की उपलब्धता की जानकारी व्यापक रूप से किसानों तक पहुँचाई जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 8,330 किसानों से 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के पर्यटक आने वाले एक माह तक बहुत कम दामों में पर्यटन ग्रामों में बने होम स्टे में रहकर ग्रामीण पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने बताया कि जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद ने मध्य

प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए ग्रीष्मकालीन ऑफर दिया है। 20 मई से 20 जून तक पर्यटक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। छिंदवाड़ा वन वृत्त में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य तेजी से जारी है। अधिक तापमान के कारण इस बार पत्ते जल्दी तैयार हुए हैं, जिससे संग्रहण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्पेन की एक टीम ने छिंदवाड़ा के पर्यटन गांवों में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की। स्पेन से आई टीम ने तामिया, सावरवानी, धूसावानी और चिमटीपुर में 3 दिनों तक ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति, पर्यटन गतिविधियों और पातालकोट की पारंपरिक आदिवासी विवाह रस्मों को कैमरे में कैद किया। ये शूटिंग रूरल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन सीरीज के लिए की गई है, जिसका प्रसारण लगभग 80 यूरोपीय देशों में किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण और इको टूरिज्म को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। पिछले दिनों सांसद विवेक वंटी साहू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी विकास खंडों में अगले 10 दिनों तक कृषि रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती, विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर शहर में अमानक प्लास्टिक डिस्पोजल और पॉलिथीन के खिलाफ संयुक्त छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम द्वारा की गई। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चार फाटक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान चार फाटक और चौराईकुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरब्रिज और सौसर लोधीखेड़ा मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। जिले में संचालित आंगनबाड़ियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। 1 से 15 जून तक जिले की सभी आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। इस दौरान निर्धारित टीकाकरण और मासिक वजन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के 211 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। ये स्वीकृति केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों के बाद प्रदान की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों का कारवां। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल सहगल से जय शेखर की बातचीत, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश।
1: हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: लीजिए अब सुनिए यादों का कारवां।

0: यादों का कारवां।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। और बात जब चलती है सरहद की, बात जब चलती है देश की, बात जब होती है सरफरोशी की, बस एक ही नाम हमारे जहन में आता है, वो है हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले फौजी। हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा होती है, उत्कंठा होती है कि कैसा होता है उनका जीवन, एक फौजी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे वो अपने पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल HS गिल साहब। गिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये सौभाग्य, हमको मौका दिया है आपके स्टूडियो में आने का, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलकर यहाँ पर।
1: गिल साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सागर से क्या यादें जुड़ी हैं आपकी।
2: जय शेखर साहब, मेरे जो पिताजी, उन्होंने एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट महारेजिमेंटल सेंटर से यहाँ से उन्होंने सर्वे शुरू किया
1: जी।
2: मैं उस टाइम के ऊपर एक साल का था।
1: अच्छा अच्छा,
2: आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं 1961 की बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ जी
1: जी।
2: तो उसके बाद तो सौभाग्य नहीं मिला आने का
1: जी,
2: और उन्होंने दो यूनिट को रेज किया है, 10 महार और 14 महार को।
1: अच्छा अच्छा,
2: उन्होंने फाउंडर मेंबर थे वो दोनों, इसके 10 महार के और
1: जी
2: 14 महार के और 10 महार के।

0: जी
1: हाँ जी, तो मेरा जो एक साल का जो छोटा बचपन बच्चा ही था,
0: जी
1: लेकिन फिर भी मेरे को याद है कि हम यहाँ पर जो आपकी झील है, जहाँ पर
0: जी लाखो बंजारा
1: लाख,
0: झील
1: हाँ जी, झील, तो
0: जी,
1: उसमें घूमने जाया करते थे
0: क्या बात है
1: एज ए बचपन की यादें मेरी उनके
0: जी
1: साथ से जुड़ी
0: जी
1: हुई जो हैं। और आज जो कुछ भी हूँ मैं, ये महार रेजिमेंटल सेंटर और महार की वजह से ही मैं आज, मैंने भी जो फौज ज्वाइन किया है या
0: जी
1: मेरे को जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ आर्मी की वजह से मिला। उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ और फिर मैंने 1983 में खुद फौज को ज्वाइन किया
0: जी एज ए
1: और
0: सेकंड लेफ्टिनेंट
1: एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट।
0: जी
1: और मैंने मतलब मेरे दिल के अंदर जो महार के साथ प्यार है, महार
0: जी
1: रेजिमेंट के साथ में प्यार है,
0: जी
1: वो लगता है मेरे को जहाँ मैंने सर्विस की उसके साथ मेरा इतना लगाव नहीं रहा होगा जितना कि
0: जी
1: पिताजी की यूनिट के साथ में है। क्योंकि वहीं से मैंने जब छोटा था इनके साथ में, जब इनकी पोस्टिंग होती गई, इनके साथ चलता
0: जी
1: रहा और मैं कोई 6वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने ये पूरा ऑब्स्टिकल कोर्स जो हमारे फौज के होते हैं, रस्सा चढ़ना, खड्डा
0: अच्छा
1: कूदना,
0: अच्छा
1: और वो शौक पूरा वो साथ
0: जी
1: साथ में मैंने करता गया इनके साथ में।
0: अच्छा रेडियो की क्या यादें हैं आपकी बचपन से लेकर अब तक?
1: रेडियो, मैं आपको अभी आपको और पीछे ले जाता हूँ, अपने
0: जी
1: गांव की तरफ लेके चलता हूँ।
0: जी
1: मेरे पिताजी का जन्म जो है वो लायलपुर का है, जो कि आजकल फैसलाबाद पाकिस्तान में।
0: अच्छा।
1: वो 14 साल के थे जब वो माइग्रेट होके यहाँ, वहाँ से आए, जब संताली में
0: जी
1: भारत बट गया
0: हाँ
1: तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के आए थे। तो
0: जी
1: जो हमने उनसे सुना बचपन के अंदर, रेडियो की सबसे पहली बात आपको
0: हाँ
1: बताता
0: हाँ
1: हूँ
0: हाँ
1: कि हमारा गांव है वो, उसका नाम है जगदेव कलां,
0: अच्छा
1: अमृतसर जिला
0: अच्छा
1: है वो, डिस्ट्रिक्ट
0: जी
1: बॉर्डर के ऊपर। और गांव के अंदर जो है लाइट नहीं होती थी
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: एक रेडियो था बहुत बड़ा, जो बड़े बड़े रेडियो होते थे पहले बॉक्स
0: जी
1: टाइप,
0: जी
1: वो रेडियो था हमारे गांव में। तो उसको चलाने के लिए ना तो सेल थे, ना लाइट
0: हाँ
1: थी, तो ना बैटरी थी।
0: अच्छा अच्छा
1: तो ये क्या करते थे मेरे पिताजी, इनको बहुत शौक था खबरें सुनने का,
0: हाँ हाँ
1: और गांव वालों को जो थे ये क्या करते थे, हमारे पास वाले गांव में एक बैटरी थी बहुत बड़ी
0: हाँ हाँ
1: जिससे कि रेडियो चल सकता था,
0: अच्छा
1: वो सिर के ऊपर उठा के लाया करते थे उस रेडियो को चलाने के लिए।
0: उतनी बड़ी बैटरी को
1: यस, और वो
0: जी
1: लोन पे लेके उधार मांग के लाया करते थे। और
0: जी
1: हाँ जी, और वो जब रेडियो ला के बैटरी को जोड़ते थे तब वो रेडियो चलता था,
0: अच्छा
1: और वो
0: अच्छा
1: इंग्लिश में न्यूज़ आती थी।
0: जी
1: तो इंग्लिश में भी लोग अभी इतने तो पढ़े लिखे थे नहीं हमारे गांव के,
0: हाँ
1: तो एक
0: हाँ
1: हमारे गांव के बहुत बड़े जज हुए
0: जी
1: उस दिनों में,
0: हाँ हाँ
1: तो वो इंग्लिश जानते थे। तो
0: अच्छा
1: उन्होंने
0: अच्छा
1: क्या करना कि सारे गांव को इकट्ठा बैठा के पहले इंग्लिश में न्यूज़ सुनना,
0: फिर तर्जुमा करना
1: फिर
0: है,
1: उनको पंजाबी के अंदर उसको
0: तर्जुमा
1: वो
0: करना है।
1: तर्जुमा
0: अरे
1: करते थे उसको।
0: वाह
1: तो
0: वाह,
1: ये
0: अच्छा
1: रेडियो के साथ
0: बहुत ही
1: हमारा
0: गहरी यादें हैं आपकी
1: अटैचमेंट
0: यार।
1: रही हमारी।
0: फिर आपको कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते रहे हमारे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले?
1: आकाशवाणी से मैं बचपन में जो विविध भारती बहुत सुनता था,
0: अच्छा
1: इधर
0: अच्छा
1: आपकी गीतमाला जो
0: जी
1: सिलोन से
0: जी
1: आया करती थी,
0: जी
1: अमीन
0: जी
1: साहब, अमीन साहब को बहुत सुनते थे,
0: अच्छा
1: पुराने
0: अच्छा
1: फौजी भाइयों का प्रोग्राम
0: जी
1: आते
0: जी
1: थे आपके,
0: हाँ हाँ
1: तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं फिर बहुत अच्छी लगती थी। या लाहौर से भी कई बार, उधर से भी पाकिस्तान के भी अच्छे प्रोग्राम आते
0: अच्छा
1: थे रेडियो के
0: अच्छा
1: ऊपर। तो
0: जी
1: हमारे ही बिछड़े हुए भाई, तो उनको
0: हाँ
1: भी हम लाहौर, क्योंकि अमृतसर बॉर्डर के साथ में उनका लगा हुआ है,
0: हाँ हाँ
1: तो उनकी भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती थी हमारे पास में,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: उनको भी सुना करते थे।
0: जी
1: और सूफीज़म के ऊपर मेरे को बहुत शौक है, उसको
0: अच्छा
1: भी बहुत
0: अच्छा
1: सुनता हूँ मैं। बुल्ले शाह हो गए,
0: हाँ
1: आशम
0: हाँ
1: शाह हो गए, पुराने पंजाबी के गाने। हमारे गांव में जो, जैसे आपको बता रहा था, बहुत ऐतिहासिक गांव
0: जी
1: है
0: जी
1: हमारा,
0: जी
1: उसकी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ।
0: जी
1: जब पिताजी जब आए थे ये सब मेरे दादा एंड सारे,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हमको वो जो घर हमारा अभी भी है, वो
0: जी
1: मुसलमानों का घर था, वो जलाउट
0: हाँ
1: हुआ था,
0: हाँ
1: और हमारे जो अभी भी घर है अभी
0: जी
1: वो उसके जो साथ में है वो मज़ार है बाबा हाशिम शाह की,
0: अच्छा
1: जैसे
0: अच्छा
1: बुल्ले शाह हुए हैं
0: जी
1: तो इन्होंने शशि पुनू लिखा था,
0: हाँ हाँ हाँ
1: बड़े मशहूर है। और हर साल वहाँ पे, अभी कोविड की वजह से थोड़ा कम हुआ, नहीं तो हर साल मेला लगता है वहाँ पे,
0: जी
1: और बड़े बड़े गायकार वहाँ पे आते हैं, सूफी
0: जी
1: सूफी के ऊपर, सूफीज़म के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग काम करते हैं उसके ऊपर
0: जी
1: आके।
0: अच्छा गिल साहब, ऐसा होता है कि एक कड़ी अनुशासन वाली लाइफ, एक जीवन आपने जिया, उसके बाद जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तब बाहर की परिस्थितियों से अपने आप को कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? क्या अभी भी आप वही सुबह उठ जाते होंगे, जल्दी से उठ के दाढ़ी बनाना, तैयार होना, फिर लगता होगा कि नहीं यार अब तो कहीं नहीं जाना, अब कौन से काम ऐसे हैं जो आपको व्यस्त रखते हैं?
1: साहब देखो, सैनिक सैनिक ही रहेगा,
0: जी
1: वो चाहे रिटायर हो जाए चाहे
0: जी
1: कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी जो वो ट्रेनिंग है, जो उसको सिखाया सिखलाई है ना,
0: हाँ
1: वो उसे दूर नहीं रह सकता कभी भी।
0: क्या बात है
1: चाहे वो, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कई बार
0: हाँ
1: कि भाई
0: हाँ
1: आप तो छोड़ दो इसको, लेकिन वो डिसिप्लिन जो है

0: जी
1: वो कई बार हमारे बीच में आ जाता है कई बार समाज के अंदर, लेकिन हम मजबूर होते हैं,
0: जी
1: हमारे दिल में कुछ नहीं होता कि हम किसी को तंग कर रहे हैं या कुछ, लेकिन वो सौभाग्य हमारे हो
0: हाँ।
1: जाता है हमारे से, मतलब
0: कड़ा अनुशासन
1: हाँ बिल्कुल।

0: इनको ऑर्डर आ गया कि आप घर जाओ अभी वापस,
1: हाँ हाँ,
0: आपको देश छोड़ना है,
1: हाँ,
0: जो मेरे पिताजी हमको बताया करते थे।
1: हाँ हाँ,
0: तो ये सब लोग वापस आए, तो जब देखा तो जो इनके मेरे दादाजी थे और सारे मेरे जो बड़े थे घर के इनके,
1: हाँ,
0: उन्होंने बैलगाड़ी सब बांध रखी थी पहले से ही, जितना का सामान उसमें ला सकते थे लेकर आए। तो जब वापस यहाँ आए तो इनके पास कुछ नहीं था, मतलब तो इनके एक आंटी थे, इनके जो बुआ जी थे वो यहीं थे पंजाब में, वो उधर माइग्रेट नहीं किए थे
1: जी।
0: वो इनको लेके गए मेरे पिताजी को, और वहाँ इन्होंने अपने साथ रखा। एक गांव है मरड़ी कलां, वहाँ पे
1: हाँ,
0: जिले में,
1: हाँ, हाँ,
0: वहाँ 5-6 साल रखा, इनको मैट्रिक कराई
1: जी।
0: और मैट्रिक करने के बाद में उनका मतलब इतना उनका इंटेलिजेंट थे मेरे पिताजी
1: जी, जी, जी।
0: मैथमेटिक्स में 100 में से 100,
1: क्या बात है,
0: इंग्लिश में 100 में से 100,
1: बहुत बढ़िया,
0: आज भी रिकॉर्ड है स्कूल में, कोई नहीं उसको तोड़ सका
1: जी।
0: तो मैं आपको, उसके बाद में ये फौज में भर्ती हुए,
1: हाँ हाँ,
0: फौज में भर्ती करते करते पहले ये रैंक्स में गए,
1: हाँ,
0: एक स्पाई में भर्ती हुए,
1: अच्छा अच्छा,
0: और वहां से फिर इन्होंने प्रमोशन लिया फौज,
1: अच्छा,
0: के अंदर आके अफसर के लिए अप्लाई किया,
1: हाँ हाँ,
0: और इमरजेंसी कमीशन हुआ करते थे जब ये 65 की लड़ाई लगी
1: जी,
0: उस टाइम पे, तो इमरजेंसी कमीशन में इनको,
1: हाँ हाँ,
0: इनकी वहाँ सिलेक्शन हो गया।
1: आपके पिताजी ने कोई लड़ाइयां लड़ी हैं क्या, कौन कौन सी लड़ाइयां हैं वो?
0: तो 1971 की लड़ाई मेरे को याद है, ये फाजिलका सेक्टर में थे
1: जी।
0: और आपने जैसे बोला कि कौन कौन था, मेरे ताया जी, इनके बड़े भाई मेरे,
1: हाँ हाँ,
0: सूबेदार थे
1: जी,
0: वो तोपखाने में थे, जो गनरी होती है हमारी, जो तोप,
1: अच्छा अच्छा,
0: गोले वाले होते हैं
1: जी,
0: उसमें वो थे। और मेरे एक चाचा थे, तीन जाने फाजिलका सेक्टर में लड़ाई में 1971 की लड़ाई में,
1: अच्छा अच्छा,
0: तीनों के तीनों एक ही परिवार से वहाँ थे,
1: बहुत बड़ी बात है।
0: और भगवान की कृपा हुई कि ये सब ठीक ठाक बच के वहाँ से निकले
1: जी,
0: और उसको बचाया फाजिल को, नहीं तो हमारे से चला जाता ये फाजिल,
1: हाँ हाँ,
0: तो उसके लिए तीनों भाई वहाँ इकट्ठे उन्होंने लड़ाई लड़ी।
1: क्या बात है। आपके बाद फौज में कौन है आपके परिवार से?
0: अभी जनाब मैं बड़ा, इसको मेरे को दुखदाई कहानी है
1: जी,
0: कि पंजाब में अभी हमारे फौज में जाके अभी वो कल्चर जो था पुराना हमारे टाइम के ऊपर
1: जी, जी,
0: वो खत्म होता जा रहा है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अभी सब बाहर की, बाहर को रुक कर रहे हैं
1: जी,
0: है ना, आसान वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो वो चीजें अभी धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड टाइम, टाइम के हिसाब से सब बदली होता जा,
1: अच्छा,
0: रहा है।
1: अपने अपनी सेवा काल के दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको याद आती है, बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही हूं और आप उसमें से निकल कर आए हूं, कुछ ऐसी घटना बताएं आप।
0: मेरा ज्यादातर ताल्लुक मेरा J&K में 12 साल का सर्विस है, उग्रवाद इलाके में ही थे हम
1: जी।
0: तो कुपवाड़ा एक जगह है, कुपवाड़ा
1: जी, बिल्कुल,
0: जो आपने सुना होगा बहुत,
1: हाँ,
0: ज्यादा उग्रवाद 91-93 में मैं उस इलाके में था।
1: हाँ हाँ।
0: तो हम एक दिन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे
1: जी,
0: दो बार हुआ हमारे साथ में ये इंसिडेंट,
1: अच्छा,
0: हुआ,
1: अच्छा,
0: जैसे आपका ये अभी स्टूडियो में बैठे हैं,
1: हाँ हाँ,
0: तो हमारा ऑफिस के अंदर बैठे बैठे हमारे सिर के ऊपर से हमारे वो बैरके, वो लोहे की वो चादर वाली होती है
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: ऑफिस वाला,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सीमेंट का नहीं था वहां पे, वो टेम्परेरी मेकशिफ्ट होता है,
1: हाँ हाँ,
0: तो रॉकेट लॉन्चर जो हमारे अंदर से अंदर सिर के अंदर से थ्रू एंड थ्रू, हमारे तीन दफ्तर थे इकट्ठे,
1: अच्छा अच्छा,
0: तीनों में से निकला ऊपर से हमारे
1: जी,
0: लकीली हम नीचे थे, लेकिन वो हम उसको
1: जी
0: भगवान की कृपा से और नहीं कुछ हुआ
1: जी।
0: तो ऐसे इंसिडेंट कई हमारे पास
1: जी,
0: उस टाइम पे J&K में जब नौकरी करते थे
1: जी, जी,
0: तो आए हमारे पास में।
1: हमारे देश ने मानेकशॉ जैसे बहादुर वीर जवान दिए हैं
0: जी, जी,
1: जिनकी वजह से आज हम आजादी की फिजाओं में सांस लेते हैं
0: जी, जी।
1: तो आपके पिताजी से, जो कि फौज में बहुत वक्त बिताया, मानेकशॉ जैसे महान लोगों के बारे में क्या क्या जानने को मिला आपको?
0: सब मानेकशॉ के साथ में हमारा संबंध, वो भी हमारे पंजाब के अमृतसर में उनका जन्म हुआ
1: जी,
0: वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे,
1: अच्छा अच्छा,
0: लेकिन उनका जो उनके पिताजी डॉक्टर थे वहाँ पे
1: जी,
0: उनका हॉल बाजार जो हमारी मार्केट है,
1: हाँ हाँ,
0: उसमें उनकी दुकान आज भी है,
1: हाँ,
0: लेकिन अभी किसी और के पास में है, लेकिन वो दुकान है, वो जगह है अभी भी
1: जी।
0: उनका जन्म अमृतसर में हुआ मानेकशॉ का,
1: हाँ हाँ,
0: एंड वो हिंदू कॉलेज के अंदर उन्होंने वहाँ स्टडी किया, जो बहुत फेमस कॉलेज है अमृतसर का
1: जी,
0: सरदार मनमोहन सिंह जैसे पर्सनैलिटीज,
1: अच्छा,
0: मानेक शाह जैसे पर्सनैलिटीज उस कॉलेज के पढ़े हुए हैं।
1: अरे वाह।
0: और हमको बड़े मान की बात है ये
1: जी।
0: और उन्होंने 1971 की लड़ाई के बंदर जो है वो बांग्लादेश खड़ा किया है, कंट्री बना दिया पूरे मैप,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो बड़े मान की बात है, हम उसको, उनको हम अपना मानते हैं, अमृतसर का मानते हैं, पंजाबी मानते हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर आपको बताता हूँ, उनको जब वो ब्रिटिश आर्मी में थे,
1: अच्छा अच्छा,
0: तो उनको 9 गोलियां लगी थी उनके पेट में, हमारी मिलिट्री हिस्ट्री हमको पढ़ाते हैं
1: जी, जी, जी,
0: हमारे जो फौज के अंदर,
1: हाँ, हाँ,
0: ये सब पूरा हमको मोटिवेशन करते हैं,
1: हाँ,
0: तो उसकी छोटे सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको, जब
1: जी,
0: उनको 9 गोली लग गई, तो उनके पास जो उनका सहायक था, उनका जो

0: गनमैन था, तो उनको उठा के वो ब्रिटिश जो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल था या जो भी उनका रहा होगा उस टाइम पे,
1: हाँ हाँ
0: उनको उठा के लेके गया। तो डॉक्टर जो अंग्रेज डॉक्टर था उसने उसको ट्रीटमेंट करने से मना किया, तो भाई ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो अल्लाह करेगा, भगवान करेगा, जो कुछ भी, तो 9 गोली लग गई है इसको
1: जी।
0: तो वो जो बंदा था उसने अपनी गन जो है वो डॉक्टर के ऊपर तान दी
1: जी,
0: कि या तो अगर ये नहीं बचेगा मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ, जनरल नहीं थे तब तो मेजर ही थे
1: जी जी जी,
0: बाद में जनरल बने
1: जी,
0: और तू भी नहीं बचेगा,
1: क्या बात है।
0: और डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेट किया
1: जी,
0: और डॉक्टर साहब ने जब उनसे पूछा भाई आपको क्या हुआ है,
1: हाँ हाँ,
0: तो बोलते हैं मेरे को गधे ने लात मारी है।
1: अरे वाह,
0: देखो आप जज्बा देखो, आप एक सैनिक का
1: जी
0: 9 गोलियां खाने के बाद भी बोलता है कि मेरे को गधे ने लात मारी, मेरे को कुछ नहीं हुआ है
1: जी।
0: तो ये लोग जो है ये ऐसे हमारे, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो यूथ है इनको पढ़े इन चीज़ों को
1: जी।
0: हमारे पंजाब का बहुत बड़ा इतिहास है, और हमारे देश का इतिहास है, मैं पंजाब की बात नहीं करता
1: जी।
0: सरागढ़ी की लड़ाई आपने सुनी होगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और उसके ऊपर पिक्चर भी बनी है, केसरिया पिक्चर
1: बिल्कुल
0: बनी है, लोगों को नहीं मालूम था इसके बारे में
1: जी।
0: और इसके 3 गुरुद्वारे बने हुए हैं, एक जहां पर लड़ाई गड़ी अफगानिस्तान के अंदर जो लॉकेबी जो पोस्ट है डिफेंड कर रहे थे, एक वहां पे है, एक अमृतसर में है और एक फिरोजपुर में है, क्योंकि इसमें ज्यादा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के थे ज्यादा,
1: अच्छा अच्छा,
0: जो वहाँ शहीद हुए थे
1: जी जी,
0: की सिख थे वो
1: जी।
0: तो सारागढ़ी की लड़ाई हमारे बहुत कुछ है हमारा।
1: कर्नल साहब हमें ये बताएं कि जब आप सर्विस के दौरान थे आपकी सुबह से दिनचर्या कैसी होती थी?
0: सब सुबेरे हमारा जो है कंपलसरी पीटी परेड,
1: कितने बजे उठना होता था
0: हमको? कोई 4:30-5:30 बजे
1: जी,
0: हाँ, तैयार होके सीधा जाके पीटी में,
1: हाँ हाँ,
0: और रनिंग करनी है,
1: हाँ,
0: रस्सा जो भी है अपना, रस्सा है, खड्डा है
1: जी,
0: फिजिकल हमारी रिक्वायरमेंट मापदंड होते हैं
1: जी,
0: वो हमारे पूरे करने होते हैं,
1: हाँ हाँ।
0: उसके बाद में वापस आने के बाद फिर तैयार होके ब्रेकफास्ट के बाद फिर दोबारा 8 बजे हमारा ऑफिस रूटीन शुरू हो जाता है
1: जी।
0: रूटीन वर्क हमारा जो आर्मी का है, जो भी ट्रेनिंग है या कोई और सिखलाई करनी है
1: जी,
0: या कैंप जाना है, कोई कैंपिंग करनी है, बाहर जाना है
1: तो। अच्छा, आपको फौज में जाने के लिए आपके पिताश्री ने प्रेरित किया, जो खुद एक फौजी थे, तो उनके फौज में रहते हुए बचपन से आपकी क्या गतिविधियां होती थी फौज के अंदर, जिसने आपकी मदद की है आपके सिलेक्ट होने में?
0: मैं यही बता रहा हूँ कि जब मैं 6वीं क्लास में था, थोड़ा बहुत फौज संभाला
1: जी,
0: तो मैं उनकी वर्दी पहन के घूमा करता था घर में, पहले तो सबसे पहले उनके बड़े बड़े बूट पहन लेने,
1: हाँ।
0: एक बच्चा देखो,
1: हाँ।
0: और वो एक उनका शर्ट और पैंट पहन लेना
1: जी,
0: और पहन के परेड करना,
1: बहुत
0: घर के अंदर ही
1: जी, जी,
0: जज्बा था,
1: ये जज्बा था।
0: और सुबह जब उन्होंने जाना पीटी परेड करने के लिए, जो मैं बता रहा हूँ रूटीन होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके साथ मैं भी जाया करता था,
1: अच्छा अच्छा,
0: उनके साथ दौड़ना,
1: हाँ हाँ,
0: जवानों के साथ दौड़ना,
1: हाँ हाँ,
0: और ये जो रस्सा करना है फिजिकल जो होता है हमारा,
1: हाँ टेस्ट, हाँ,
0: होता है, वो हमने 6वीं क्लास में ही कर लिया था पूरा,
1: क्या बात है।
0: बाद में तो हम जब सिलेक्शन के लिए गए, हमारा जब सिलेक्शन हुआ
1: जी,
0: हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको तो हाँ, पहले से हम तैयार थे इसके लिए,
1: सही बात है,
0: और ये हमने फर्स्ट गो में जाके क्लियर कर दिया इसको सारा ही। तो ये मोटिवेशन घर से मिली, और सारे मेरे ताया, आपको बताया मैंने, ताया जी
1: बिल्कुल
0: फौज में थे।
1: अच्छा गिल साहब, हमारे श्रोताओं से, उन युवकों से आप क्या कहना चाहेंगे जो फौज में जाने की सोचते हैं, देश की सरहद की रक्षा करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें?
0: मैं तो यही संदेश करूंगा कि सबसे अच्छी जो अगर देश काम करना है इंसानियत के लिए, देश के लिए, तो आप फौज में रह के ही कर सकते हैं, बाहर के भी काम अच्छे हैं, मैं नहीं कि सर्विस को
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कंडम नहीं कर रहा हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक भाईचारा हमारा है, जो हमारा एक एक एकपन है,
1: एकता,
0: वो एकता है
1: जी,
0: वो मेरे को मेरे लाइफ टाइम में कहीं बाहर नहीं दिखती मेरे को
1: जी, जी,
0: क्योंकि जो फौज के अंदर हमारा, आपको एक और चीज बता देता हूँ, चाहे मैं किसी भी धर्म को बिलोंग करूँ,
1: हाँ, हाँ,
0: कोई भी जात को बिलोंग करूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारे दिल में कभी नहीं आता, अगर
1: हाँ,
0: एक प्लेट एक ग्लास में अगर चाय पड़ी है,
1: हाँ,
0: तो चाहे वो कोई भी धर्म का हो,
1: हाँ,
0: चाहे वो ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी हो,
1: सही सही सही,
0: हम एक ही ग्लास में सब पियेंगे,
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: और दूसरी बात, हमारा जो धर्मस्थल होता है
1: जी,
0: उसको हम सर्वधर्मस्थल बोलते हैं, सर्वधर्मस्थल,
1: बहुत बढ़िया,
0: एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको गुरु ग्रंथ साहब
1: जी,
0: कुरान शरीफ
1: जी,
0: बाइबल, गीता, जो भी बौद्ध जैन कोई भी धर्म के हो,
1: हाँ, सभी मिल जाएंगे,
0: एक ही जगह पे आपको वो एक ही शेल्फ में पड़े रहते हैं
1: जी,
0: जाते हैं आप तो जब आप नवाजते हैं,
1: हाँ,
0: तो सबको आप
1: सबको हो जाता है वो,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है। और कभी हमने, हमको कास्ट सिस्टम का पता ही नहीं है, हमको आज तक नहीं पता, हमको सच बताऊं हमको नहीं पता ये कौन सी जात है, कौन सी बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो सिस्टम है
1: जी,
0: वो होना चाहिए हिंदुस्तानी, दैट्स ऑल,
1: बस एक ही
0: एक

0: एक ही नाम।
1: हमारा जो ये आपका आईडी पूछता है ना जब कोई,
0: हाँ,
1: तो आईडी होनी चाहिए हिंदुस्तानी।
0: बहुत बढ़िया,
1: हिंदुस्तानी
0: जी। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी मुलाकात लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस गिल साहब से। ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। गिल साहब, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आप हमारी स्टूडियो आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ पर आपके पास आऊँगा और आपने मेरे को ये मौका दिया। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, आपको और मेरे पिताजी को। आज मैं उनकी भूमि में खड़ा हूँ, आज उनकी कर्म भूमि में खड़ा हूँ, जन्मभूमि में खड़ा हूँ, जहाँ से उन्होंने मेरे को रोटी खिलाई, जहाँ से उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की, और इससे बड़ी मेरी बात क्या हो सकती है। सौभाग्य आज
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: यादों का कारवां।
1: अभी आप सुन रहे थे यादों का कारवां, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल सहगल से जय शेखर की बातचीत। लीजिए अब सुनिए संदेश।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
3: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हेलो माँ। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच, आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
7: बेटा, अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
6: News on AIR?
7: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
6: अरे वाह माँ, कमाल है।
8: News on AIR।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से। हेलो माँ। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच, आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
7: बेटा, अब

0: यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
0: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
5: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद में सुनिए भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पोटवाल की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है दूरियां। गीत लिखा है सुदर्शन ने और संगीतकार हैं जयदेव। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है छत्रपति सामाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। गांधी चौक रोपड़ से हरदीप मीका, बलविंदर बिरक, जीते बिरक, मीका बिरक ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, प्रेम नारायण, रमेश, शिवा और शिवांशु ने। नालेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवानकर, निर्मला विशाल मालकपुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मोहरेकर ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

अगली फरमाइश हमें भेजी है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी शर्मा, सौरभ साइना और निवान शर्मा ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित ध्वनि ने। मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, सिद्धांत, एकांश और अर्जुन ने। इसी गीत को पसंद किया है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुरा टेमा जिला खरगोन एमपी से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, अमित सच,

चिन, राज आर्यन, आरोही ऐशिका, अंजलि श्वेता वर्मा ने। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव हरमन और उनके सभी परिवार वालों ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म दूसरा आदमी से। गीत आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगली फरमाइश हमें भेजी है बोरखेड़ा पित्रा मल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश ने इसी गीत को पसंद किया है। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, शौर्य नामदेव और समर्थ ने। ग्राम राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, दिव्यांश बघेल ने। नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास, रेखा, आदित्य और वैभव शिंदे ने। खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म बाजीगर से ये गीत, आवाज़ है विनोद राठौर, अलका याग्निक की। गीत लिखा है जमीर काजमी ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
3: आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अगली फरमाइश हमें भेजी है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SK, पप्पी खुराना ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म विवाह से ये गीत। आवाज़ है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल्का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट।

0: नहीं जा पाई।
1: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
0: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
1: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
0: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ। हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
1: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी।

0: कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये रो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: ये मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे इसको भी डालो।
3: हाँ,
2: ये देखो
3: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है। हाँ। मेरा छोटा सा बच्चा।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
3: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
3: बढ़िया।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र

0: चित्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज़, हसन रिजवी के बोल और नरेश परेश का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बिन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें, सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश। अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी।

0: की और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम के अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और उसके संरक्षण का प्रयास करे। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों की महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूँ मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो इसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराज़गी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे

गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है, क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है, और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। भाई देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है, या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं? अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने। बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोध ही कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है। थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर हैं। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं। हे गर्मी, तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया। देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया। वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे। गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे, ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे, क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती। गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा। लाख बुलाओ आ ना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में। याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए। लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज़्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों? और अगर बता सकें तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए सरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती, एसी कूलर से न दिल बहलता है, रात में न नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारत, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफ़ी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है, आप वाराणसी

महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयसर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं, ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफ़र तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफ़र इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो ज़रूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरी सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को हैं पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं।

0: மதன் மோகன் கீத்து, ராஜேந்திர கிருஷ்ண கலிகாவர் மதன் மோகன் கி துன், கேட்வே ஆஃப் இண்டியா மதுபாலா பாரத் பூஷண். ஆர் हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है. इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ़ नहीं करेगी. और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है. तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है. ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया. वहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी. गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है. ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी. वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताज़ा कर देती हैं. और ताज़ा हो रहा है ये संदेश. गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है. मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है. रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है. पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं. सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं. दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है. गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है. प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है. बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है. हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं. लिखते हैं कि गर्मी में ज़्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मज़ा बहुत है. कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है. वाकई. एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है. मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ. आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए. बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया. और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है. तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है. क्या बात है. पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है. दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है. कूलर की ठंडी सरगोशी, मटके का पानी प्यारा है. गर्मी चाहे जितनी चुभे, बचपन इसमें भी न्यारा है. और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है. जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है. वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं. देखिए है आपने, बताइएगा हमें. और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं.
1: झूमता मौत

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो जाए, और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी

सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढल कर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए, खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से ज़रूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है। हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीज़ों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है, हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आएं। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुट्टी मिले। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है। इसी बीच कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग एक सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफ़ी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर, मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूँगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की ज़रूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीज़ें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक

गर तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो ज़रा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज़, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूँ चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज़ धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियाँ बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियाँ, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियाँ तो आना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है,

बचपन में सबसे ठंडक गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी ज़रूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिएं, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओहो, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयाँ आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयाँ नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे ज़मीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज़ किनकी है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज़ और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहां बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं?

नहीं लगता। और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। आवाज मोहम्मद रफी की है, बोल नीरज के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जय।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म शक्ति का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट इवेंट आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन में बिग कैट और जैव विविधता संरक्षण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर भी विशेष प्रस्तुति इस कार्यक्रम में दी गई। इसके साथ ही इंडियाज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026 सहित कई प्रकाशनों और डिजिटल पहलों का विमोचन भी हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि
1: धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित, भारत में भी लगभग 23% वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन श्रिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, भारत ने उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे।
0: धार की भोजशाला में आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को वाग देवी मंदिर करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की नमाज पर रोक लग गई है। दोपहर 1 बजे गर्भगृह में महाआरती हुई और फूलों से सजे परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भोपाल में 12 मई को हुई त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई को पूरे प्रदेश में जांच के अधिकार भी दे दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रात में 8 बजे अशोकनगर पहुंचेंगे। श्री सिंधिया वहां जैन तीर्थ थुबोन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कल सुबह श्री सिंधिया नक्षत्र वाटिका शिवपुरी में कार्यक्रम के बाद गुना के लिए रवाना होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पर हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का मसौदा gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या हितधारक 5 जून 2026 तक अपने सुझाव वेबसाइट मेल sogad1@mp.gov.in पर कर सकता है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी

अकादमी के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें गोलकीपर आयुष रजक, डिफेंडर अंश भौत्रा और करण गौतम, मिडफील्डर अभि माणिकपुरी और फॉरवर्ड सिद्धार्थ बेन तथा गाजी खान शामिल हैं।

ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान आरसीडी के द्वारा 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ और आगरमालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के प्राचीन कमलकुंड से 7 कछुओं को कल वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया। वहीं आईपीएल में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रनों से हराया। आज शाम हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र

0: स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
5: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज़ में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी, बेटा बड़ा है
0: जी।
1: और

0: लिया है वो छोटी है अभी।
1: अच्छा। और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
0: जी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
0: जी दीदी मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकने का जो होता है वो सब बनाती हूँ। और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज।
1: जी क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
0: जी मैं जीना है तो हंस के जियो,
1: जी
0: खाने दाल छेलियो।
1: अच्छा तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ट्यूशन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा।
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आना है, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं। तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान, ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर के क्लासेस होती है वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी।
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी।
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी।
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता
0: जी। हाँ बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है।
1: हाँ, जी,
0: जी। तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी।
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक
0: जी।
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसपे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो बेकिंग डिश है, जो एल्युमिनियम की आती है ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है। अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था, इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है,
0: उसने
1: ग्रेजुएशन किया है। तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है, मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो भी भारती बहुत सुनती थी, और सबकी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवा

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज़ है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारे

0: बहुत पुराना पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम जाता था तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
1: हाँ अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
0: वही साधन था, बिल्कुल सही।
1: जी, और कल्पना जी आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
0: मेरे झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
1: जी।
0: हाँ,
1: और
0: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
1: सही बात है।
0: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ने, हमारे ससुर तो सहजल के गाने गाते थे।
1: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती है यानी आपके घर में।
0: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
1: जी,
0: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
1: क्या बात है,
0: सबको इसका। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
1: क्या बात है।
0: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी।
1: जी।
0: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
1: जी,
0: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
1: जी।
0: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए, तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
1: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लगा।
0: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
1: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: समझ ले, मुँह से कहना मुश्किल है।
1: मैं बोली क्या जानू आँखों की ये बोली, हो बोली

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूं, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूं।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा गाना?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश
0: जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको

0: समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी,
1: हेलो सहेली, सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाए?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम घूम जाएगा।
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है, नाम घूम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल, नाम

0: अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
0: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
1: जी।
0: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है
1: जी।
0: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है। और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
1: जी, जी।
0: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं।
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: जी, सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का
1: और गाने का बोल है मैं हूँ खुश।
0: क्या बात है।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर
0: जी।
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, काया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है,
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा
0: जी,
1: प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी हेलो सहेली। ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी।
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पार
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफ़र तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मो रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था, वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। ये कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपये की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपये नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना।

नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहाँ के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए

भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

मरना क्यों चाहती है? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नज़र संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

0: चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।
1: जीवन

0: संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी अच्छी है।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरी बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिखकर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकरोधी नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं वन्य जीव संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। सरकार ने कहा है कि पिछले 4 दिन में देश की बिजली मांग में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। देश के कई भागों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि कल दिन के समय बिजली की मांग अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 270.82 गीगावाट रिकॉर्ड की गई। धार में भोजशाला को वाग देवी मंदिर घोषित करने के बाद आज पहले शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए फैसला दिया था। आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। त्रिशा की 12 मई को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। मामले में पति समर्थ सिंह ने जमानत अर्जी वापस ले ली है और प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

दोस्तों, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के इस सुविचार के साथ स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवांगी तिवारी। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे गीत संगीत और आप सभी के लिए होगा काव्य पाठ। आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण चर्चा से, जिसका विषय है विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे सामान्यतः CSIR कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्था है। ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। उस समय भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को संगठित रूप देने और उद्योगों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर ने इसकी स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। CSIR का मूल उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के माध्यम से देश के आर्थिक औद्योगिक और सामाजिक विकास को गति देना है। यहाँ संस्था नई तकनीकों के विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक समस्याओं के समाधान तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती रही। स्वतंत्रता के बाद भारत में वैज्ञानिक ढांचे को मजबूत बनाने में CSIR की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आज ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक अनुसंधान संस्थाओं में गिनी जाती है। CSIR के अंतर्गत देश भर में अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र कार्य करते हैं। ये संस्थान औषधि निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस, पर्यावरण, ऊर्जा खनन, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। दोस्तों, CSIR ने भारत में कम लागत वाली दवाओं और तकनीकों के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया है। हल्दी और बासमती चावल के पेटेंट विवाद में इस संस्था ने भारतीय पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त जल शुद्धिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा ग्रामीण तकनीकों के विकास में भी CSIR का योगदान उल्लेखनीय रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस संस्था ने परीक्षण तकनीक, दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधानों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। यह संस्था केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं है बल्कि युवाओं और शोधार्थियों को भी प्रोत्साहित करती है। CSIR UGC NET परीक्षा देश की प्रमुख शोध परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके माध्यम से जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। आइए अब सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अक्सर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी हिमेश रेशमिया की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। आइए ले चलते हैं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर, जिसका विषय है विश्व जैव विविधता दिवस। दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की विविधता। ये केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व का आधार भी है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके बाद 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि यदि जैव विविधता नष्ट होती रही तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। जैव विविधता तीन प्रमुख स्तरों पर होती है, अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। अनुवांशिक विविधता किसी एक प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले भिन्न गुणों को दर्शाती है। प्रजातीय विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों की संख्या को दर्शाते हैं, जबकि पारिस्थितिकीय विविधता जंगल, नदी, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ जैसे विभिन्न प्राकृतिक तंत्रों की विविधता को बताती है। आज के समय में जैव विविधता कई खतरों का सामना कर रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके मुख्य कारण है। दोस्तों अनेक जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यदि समय रहते संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। जैव विविधता का संरक्षण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन, दवाइयाँ, स्वच्छ वायु, जल और जलवायु संतुलन सीधे प्रकृति पर निर्भर है। मधुमक्खियाँ परागण करती हैं, वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, वन वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सुरक्षा भी है। दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण, संगोष्ठियाँ, पर्यावरण रैलियाँ, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि जैव विविधता पृथ्वी की अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण केवल सरकारों का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी मानव जीवन सुरक्षित और संतुलित रह सकेगा। अभी हम बात कर रहे थे विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में। दोस्तों कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सुनवाते हैं आपको नीलम प्यासी से काव्य पाठ।
1: आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा हृदय से नमस्कार। मैं अपनी बात गजल के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पेश है आप सभी के सम्मुख गजल की कुछ पंक्तियाँ। वीरानी अंधेरी गलियों को मुस्कुरा के पार कर दी है, वीरानी अंधेरी गलियों को मुस्कुरा के पार कर दी है, ये बात अलग है कि वो उजालों से प्यार करती है। वीरानी अंधेरी गलियों को मुस्कुरा के पार कर दी है, ये बात अलग है कि वो उजालों से प्यार करती है। उदासी के मौसमों में उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, उदासी के मौसमों में उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, सुकून से मौसमों के बदलने का इंतजार करती है। सीख लिया है उसने खुद के साथ रिश्ता निभाना, सीख लिया है उसने खुद के साथ रिश्ता निभाना, दुनिया के खोखले सब रिश्ते दरकिनार करती है। शिकायत नहीं करती, शिकायत नहीं करती, सब कुछ चुपचाप सहती है, शिकायत नहीं करती, सब कुछ चुपचाप सहती है, दिन रात कोशिशें करती है और लगातार करती है। और अंतिम शेर सुनाऊंगी कि प्यार वफा की दुनिया में वो वक्त लगा के जाती है, प्यार वफा की दुनिया में वो वक्त लगा के जाती है, वो जब भी प्यार करती है तो बेशुमार करती है। एक अन्य गजल और उसकी कुछ शेर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। नजरों के दायरे में सब कुछ नहीं आता, नजरों के दायरे में सब कुछ नहीं आता, जमीन आती है तो आसमान नहीं आता, नजरों के दायरे में सब कुछ नहीं आता, जमीन आती है तो आसमान नहीं आता, दुनिया देखने हमारी खुद की नजरें हैं, दुनिया देखने हमारी खुद की नजरें हैं, तुम्हारी नजरों से हमें वो नजर नहीं आता। कुछ अन्य शेर सुनाऊंगी। दूर हुए तुमसे तो खुद से मिलना हुआ, दूर हुए तुमसे तो खुद से मिलना हुआ, खोखले हैं

हैं जिन्हें तन्हा रहना नहीं आता और जिंदगी के खेल में वो हमेशा पीछे रहे, जिंदगी के खेल में वो हमेशा पीछे रहे, वो जिन्हें गिरकर फिर उठना नहीं आता। कुछ अन्य शेर सुनाऊं।

0: परेशानी के बहाने बहुत होते हैं, पाकर के कुछ खोने के बहाने बहुत होते हैं, दर पर किसी की औकात देख कर जाते हैं, दर पर किसी की औकात देख कर जाते हैं, गरीबी को मौत के बहाने बहुत होते हैं, बैठे हुए चलते हुए खड़े खड़े सो जाता, बैठे हुए चलते हुए खड़े खड़े सो जाता, थकावट को नींद के बहाने बहुत होते हैं, बैठे हुए चलते हुए खड़े खड़े सो जाता, थकावट को नींद के बहाने बहुत होते हैं, और पस्त पड़ जाता बदन ईमान की रोटी जुटाते, पस्त पड़ जाता बदन ईमान की रोटी जुटाते, मेहनत को कामयाबी के बहाने बहुत होते हैं। और अंतिम शेर इस गजल का, जंगलों के पेड़ों को कौन खाद पानी देता, जंगलों के पेड़ों को कौन खाद पानी देता, जिंदगी को जीने के बहाने बहुत होते हैं। कि बात कुछ ऐसी हो कि दिल पिघलने लगे, बात कुछ ऐसी हो कि दिल पिघलने लगे, हम ठहरे सोचें और फिर बदलने लगे, बात ऐसी हो दिल पिघलने लगे, हम ठहरे सोचे और फिर बदलने लगे, फरेबी दुनिया से हमारा दिल जो भर गया, फरेबी दुनिया से हमारा दिल जो भर गया, महफिलों में गजलों में सच सच उगलने लगे, औरतों की ताकत से डरी बैठी है दुनिया, औरतों की ताकत से डरी बैठी है दुनिया, वजूद दबाने को तो उनके ख्वाब कुचलने लगे। कुछ अन्य शेर सुनाऊंगी कि आंखों से तू झांकता शब्दों से झलकता है, आंखों से तू झांकता शब्दों से झलकता है, तेरे संग रहकर हम तुझी सा महकने लगे, उम्मीद और भरोसे से बरकरार है दुनिया, उम्मीद और भरोसे से बरकरार है दुनिया, जो भरोसे में कमी हुई तो कदम बहकने लगे, इबादत इतनी गहरी हो कि तू खुदा बन जाए, इबादत इतनी गहरी हो कि तू खुदा बन जाए, सब छोड़ कर कदम उसकी ओर ही बढ़ने लगे। एक अन्य गजल और उसके कुछ शेर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी कि उसकी आंखों में नामालूम कितना कुछ समाया होगा, उसकी आंखों में नामालूम कितना कुछ समाया होगा, न जाने किन रास्तों से गुजर कर वो यहाँ आया होगा, उसकी आंखों में नामालूम कितना कुछ समाया होगा, न जाने किन रास्तों से गुजर कर वो यहाँ आया होगा, आज बहुत रातों के बाद वो चैन की नींद सोया है, आज बहुत रातों के बाद वो चैन की नींद सोया है, उसने आज किसी की आंख का काजल चुराया होगा। शेर पढ़ती हूँ कि झूठ की दुनिया से उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, झूठ की दुनिया से उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, सच बोलने में उसका ईमान थोड़ा डगमगाया होगा, गर इस वहम की दुनिया के तुम सारे वहम उतार दो, गर इस वहम की दुनिया के तुम सारे वहम उतार दो, तो दिख रहा हर एक शख्स अपना नहीं पराया होगा, अंधेरी दुनिया में फिर आंखों का काम क्या रह जाता है, अंधेरी दुनिया में फिर आंखों का काम क्या रह जाता है, सुनाने को अपनी आप बीती वो जोर से चिल्लाया होगा, एक शख्सियत को उसने आज औरत मान लिया है, एक शख्सियत को उसने आज औरत मान लिया है, उसे बहुत गहरे अपनेपन से किसी ने अपनाया होगा, और दुनिया में आज वो इंसान धोखे पर धोखे खा रहा है, दुनिया में आज वो इंसान धोखे पर धोखे खा रहा है, जिसने खुद को समझने में बहुत कमजोर लगाया होगा, उसकी आंखों में ना मालूम कितना कुछ समाया होगा।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नीलम प्यासी से ये काव्य पाठ। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे हाईवे फिल्म से प्यारा संगीत, जिसमें आवाज थी एआर रहमान की, संगीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था एआर रहमान ने। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में दे देते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रोजगार सूचना। रेलवे आरआरबी योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3। पद की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 30 जून 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। शैक्षणिक योग्यता बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप इनके आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते सुनवा देते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म से प्यारा सगी, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। और इसी के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी मित्र शिवांगी तिवारी को। नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
1: दंभ का स्तंभ खंधम धम त्रिशूल गाड़ के, प्रलयंकारी गति से भिन्न न खेल गगन फाड़ के, ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लब्स और लम्हे।
3: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
4: लफ्ज और लम्हे।
3: इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं नासिर
4: और मैं साहिबा। आइए सुने लिजा सारा खां से उनकी नज्म औरत।
5: माँ के

0: और लचक तांग था, नाजुकी में ताजगी में एक अजब सा नूर था।
1: सुभान अल्लाह।
0: हुस्न

0: था।
1: और अब इजाजत चाहते हैं साहिबा
2: और नासिर
3: लिजा के
1: लफ्ज और लम्हे।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
4: लिजा के लफ्ज और लम्हे, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हो चुके हैं। पेश कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं सरदार अंजुम का लिखा कलाम, संगीत है जगजीत सिंह का, आवाज़ है तलत अजीज़ की।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम संगीत सरिता में अब आपको सुनवाते हैं गुलजार साहब का लिखा कलाम, स्वर और संगीत जगजीत सिंह का एल्बम मरासिम।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: संदेश के बाद संगीत सहायता कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं नीना मेहता के स्वर में निदा फासली के बोल। संगीत है राजेंद्र मेहता का, एल्बम है हम सफर।

संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के

0: संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, लीजिए इसका शेष भाग सुनिए।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है महबूब मेरे महबूब। गीतकार हैं रविंद्र रावल और संगीतकार राम लक्ष्मण।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने आनंद बख्शी का लिखा हुआ एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ लिया है। स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है चुपके चुपके।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब सुनते हैं फिल्म एक नजर का दो गाना आवाज।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पुलिस पब्लिक। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और अमित कुमार। गीत को असद भोपाली ने लिखा है और धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं राम लक्ष्मण की संगीत निर्देशन में देव कोहली की रचना, आवाजें लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम की, फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन।

0: तराने नए पुराने।
1: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी सुनने वालों का और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है मिलन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं जेल थीफ इस फिल्म का गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं, बोल है मजरू के संगीत है एस टी बर्मन का।

0: इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत है सलील चौधरी का। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। फिल्म का नाम है माया।
3: तस्वीर तेरे दिल में, जिस दिल

इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 6:45 हो चुके हैं। विशेष कार्यक्रम लोकरंग कार्यक्रम में स्वागत सभी सुनने वालों का। और इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं गणेश वंदना। कलाकार हैं बाबूलाल मस्ताना।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए

0: बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये लोक भजन। कलाकार हैं मीरा सेन और सखियां।

0: मीरा सेन और सखियों के स्वर अभी आपने सुने। आप सुन रहे थे लोक भजन। इस लोक भजन के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी

0: जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:30 से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8 बजे का समय होगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 बरस की सुनहरी यादें। आमंत्रित मेहमान हैं डॉक्टर ललित मोहन, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी और पूर्व डीन केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। भेंट करता होंगे जय शिखर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9:30 से विविध भारती। राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में

0: समाचार होंगे रात्रि 11 बजे से, इन्हें अमरेली करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनूप प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 11:05 से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की इस सभा का समापन होगा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। बाकी के कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम विवरण के तहत आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल शाम 6:30 पर आप सुनिएगा सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। लोकरंग कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। कार्यक्रम विवरण के तहत कार्यक्रमों की जानकारी प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। शाम 7:30 पर सुनिएगा कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में कल का खास क्रम होगा आकाशवाणी गांव में। रात्रि 8:00 का समय होगा चित्रपट संगीत का। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:20 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9:00 से। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:15 से। सुबह 9:10 पर आप सुन सकते हैं पॉडकास्ट सीरीज पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00 से, इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फरमाइशी कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत सुनिएगा सुबह 10:05 से। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा सुबह 10:30 से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5:00 से, इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:02 से, इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर। और त्रिशा शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश।

0: सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकरोधी, नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है और अगले 5 साल में इसे फिर से दोगुना करने का लक्ष्य है।
1: यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी
2: और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की GDP का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है।
3: हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 की और बहुत जल्दी हमारी 100 साइट जो है रामसर साइट हो जाएगी। इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान की जानकारी भी दी।
4: हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है, हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं इसको प्रतिबद्धता के बलबूते तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक लगभग 3,000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्वार, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्यप्रदेश नंबर 1 पे है।
0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया जिसमें पहले सिर्फ 8 डिब्बे थे। इस मौके पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण और जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जाएंगे। दौरे से पहले श्री सिंधिया ने समर्थकों से अपील की कि उनके स्वागत में कोई पेट्रोल डीजल वाहन न जलाए और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ईंधन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जून को 12 राज्यों की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिसमें प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर बैठे सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है जिसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। तुषार शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह आज शाम जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। इससे पहले समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत की याचिका भी वापस ले ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने आज तुषा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में भोपाल एम्स में होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। धार में भोजशाला को वागदेवी का मंदिर घोषित करने के बाद आज पहले शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए फैसला दिया था। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती हुई। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और करीब 1800 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे।

राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने अशोकनगर कलेक्टर को चंदेरी के गाड़िया लोहार परिवारों को जल्द आवासीय पट्टे दिलाने के निर्देश दिए हैं। गाड़िया लोहार समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मिलकर अपनी मांग रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी पात्र परिवारों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के दो परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में

पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा 25 मई से नौतपा शुरू होगा और उसके बाद गर्मी और भी बढ़ने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आज शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे मध्य क्षेत्र कार्यकर्ता विकास वर्ग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सदुपयोग पर बल दिया है। बैतूल कलेक्टर ने आज रानीपुर पुलिस थाना म्यूजियम में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की। झाबुआ कलेक्टर आज राणापुर विकास खंड के ग्राम समोई में संतृप्ति शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर इच्छापुर हाईवे निर्माण का निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राजगढ़ जिले की 23 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के लिए जारी भर्ती की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। शहडोल के केशवाही वन परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। खंडवा में आगामी त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। सीबीएसई ने 12वीं की आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में प्रदेश के 6 खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और आईपीएल में अब से कुछ देर में हैदराबाद में सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर। और तुषार शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश, प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हो चुके हैं, सुनते हैं लोक रंग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये लोक भजन। कलाकार हैं राजा राम सिंह कोमल।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और पुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
2: संदेश के बाद लोक रंग कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र सिंह परमार और साथियों के स्वर। सुनते हैं ये हास्य गीत।

0: काहू की एने ना मानी, काहू की एने ना मानी हेता पे हो लगी। इस हास्य गीत के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 होने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है दिन शुक्रवार और आज होते हैं फरमाइशी फिल्मी गीत को कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत। सो हम चिट्ठिया लेके बैठे हैं और जब पहली चिट्ठिया हमें आई है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु दासु, अर्नव आनंद, सत्यम आनंद की। इन सभी भैया बहन ने सुनवो चाहो है काली टोपी लाल रुमाल को जो गीत, जिखो संगीत से सजाओ है चित्रगुप्त ने, इखो लिखो है मजरू ने और इखो गाओ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। सुनत है जो मीठो सा गीत।

भैयारों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जो दूसरी चिट्ठियां हमारे हाथ में है, जहां हमें आई है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा बेबी, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरो माखीजा कुटुम्ब। इन भैया बहन ने सुनबो चाहो है गोलमाल फिल्म को जो गीत जी किशोर कुमार ने गाओ है, इको संगीत से सजाओ है आर डी बर्मन ने और इके गीतकार है गुलजार।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: भैया अरो, कार्यक्रम में बापा साथ हैं अंतराल के बाद, और चिट्ठियां हमने एक और ले ली है अपने हाथ में, जहां हमें आई है आर्य नगर कोहमा भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल की। इन भैया बहन ने सुनबो चाहो है सौदागर फिल्म को जो गीत जी लता मंगेशकर ने गाओ है, और एक संगीत से सजाओ है रविंद्र जैन ने, और ये लिखो भी रविंद्र जैन ने है। आओ सुनत है जो गीत।

भैयारो, इतनो मीठो गीत सुन के आगे बढ़त है। और एक और चिट्ठिया है जो भी खूब अच्छो मीठो सो गीत हमारे पास है। फिल्म स्वयंवर है और आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है। और इको पसंद कर भेजो है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। आओ सुनते हैं जो एक और मीठो सो गीत।

यारो कार्यक्रम में आगे बढ़ते और कुछ सूचना आपके लाना है वह हम आपको दे देते हैं। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम को प्रसारण करो जय है। ई हेलो ग्राम सभा के लाने विषय है ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य। ई कार्यक्रम में जो श्रोता भैया बहने अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को समाधान चाहते हैं वे दिनांक 24 मई 2026 को शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पे फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर फिर कौन सुन लेवे, दिनांक 24 मई 2026 को संजावेरिया 7:30 बजे से 8 बजे लो। फोन नंबर है 2660902 और 2660903 और भोपाल से बाहर के श्रोताओं के लाने एसडी कोड है 0755। जाहती सूचना फिर का हम एक चिट्ठिया ले लेते हैं और जा हमें आई है जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश बिहारी जायसवाल, इन सभी भैया बहनों ने सुनबो चाहो है सनम पिक्चर को जो गीत जिए गाओ है कुमार शानू और अलका याग्निक ने और इनके संगीतकार है आनंद मिलन और इको लिखो है समीर ने। तो सुनते हैं जो एक नए जमाने को गीत है।

भैया रो, कार्यक्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और जैसे कि अपन जैव विविधता की बात कर रहे थे, प्रकृति की बात कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, तो भाग्य से आज एक चिट्ठी आई है हमारे पास नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। इन सभी भैया बहनों ने कछु ऐसे गीत की फरमाइश लिख भेजी है। फिल्म को नाम है एक बार फिर और इखो गाँव है भूपेंद्र व अनुराधा पौडवाल ने और इखो संगीत से सजाओ है रघुनाथ सेठ ने और ये लिखो है विनोद पांडे ने। सुनते हैं जो बहुत ही मीठो सा गीत है।

भैयारो, सासू मासू जो गीत बहुत ही मीठो होतो, चिड़िया पक्षियन की बातें हती। अब जल्दी से कल के कार्यक्रम सुन लो, कल भुनसारे कृषि चर्चा में सुनियो वर्मी कंपोस्ट बनावे की आसान विधि। वार्ताकार हुई है डॉक्टर पीयूष कुमार पाठक और संजय बिरिया हुई है अपनी ग्राम सभा से, वो भी सुनियो। अब दो अपनी अंशु बहन को आज्ञा और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें किशोर कुमार हरिहरन और साथियों की हैं और फिल्म का नाम है सिंदूर।
2: ए, बोल, ए, कचुंबर।
3: अरे बोल पाखंडी,
2: तू शुरू करता है क्या?
3: अरे तू ही शुरू कर।
2: अच्छा ठीक है, सुन ले।
3: सुना
2: सरे गा रे गा रे गा पा गा पा गा पा दा पा दा पा दा पा दा सा सा दा पा दा पा गा पा गा रे गा रे सा सा दा सा पा दा गा पा गा रे गा सा बोल बोल बोल झट

मैं जी

इस हास्य गीत के बाद चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं ऋषि कपूर, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजें। बोले मजरू के संगीत है राहुल देव बर्मन का। सुनते हैं जमाने को दिखाना है इस फिल्म की ये कव्वाली।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी के बोल

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 बरस की सुनहरी यादें। आमंत्रित मेहमान डॉक्टर ललित मोहन, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी और पूर्व डीन केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। भेंट करता है जय शिखर।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी के सुनहरे 90 बरस मना रहे हैं। इन 90 बरसों की यादें, इन 90 बरसों का विकास श्रोताओं के सामने हम उजागर कर रहे हैं अपने उन वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से जिन्होंने अपना बहुत कुछ आकाशवाणी को दिया और आप श्रोताओं के साथ बांटी अपनी हिस्सेदारियां। ऐसे ही आज हमारे साथ आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी और अनाउंसर डॉक्टर ललित मोहन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं इस लंबे सफर के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जय शेखर जी, और आपका बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी सागर का भी बहुत धन्यवाद जो आपने हमें याद किया
1: जी। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के 90 बरस कैसे देखते हैं आप इनको?
2: जय शेखर जी, मैं तो रेडियो को सुनता हूँ, जीता हूँ और मुझे आज भी रेडियो ही पसंद है। सुबह 5:55 से मेरे घर में वंदे मातरम धुन के साथ आकाशवाणी की शुरुआत हो जाती है और वहाँ से हमारी दिनचर्या आज भी शुरू हो रही है विगत कई सालों से
1: जी।
2: तो ऐसे श्रोता होंगे, कितने होंगे नहीं पता, लेकिन उनमें से मैं और मेरा परिवार कम से कम आज भी नियमित रूप से सुबह की सभा सुनते हैं। आकाशवाणी के 90 साल, तो ये बताना जरूरी है कि 90 साल कैसे। सन 1936 में
1: जी,
2: आज़ादी से पहले इसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो।

0: जी बिल्कुल।
1: और ऑल इंडिया रेडियो चलते चलते चलते जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 बंटवारा हुआ
0: जी,
1: तब हमारे पास 6 रेडियो स्टेशन बचे थे।
0: हाँ,
1: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ और त्रिचुनापल्ली
0: जी।
1: इन 6 आकाशवाणी केंद्रों से भारत में रेडियो की शुरुआत आजादी में हुई।
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे धीरे इनका विकास हुआ और उसके बाद फिर FM, LRS जिनको लोकल रेडियो स्टेशन आप कहते हैं बढ़ते गए, और फिर कम्युनिटी रेडियो आया।
0: हाँ,
1: सामुदायिक रेडियो, फिर प्राइवेट FM रेडियो आया
0: जी।
1: तो लेकिन आपने कहा आकाशवाणी के 90 साल।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि अरे रेडियो मतलब क्या, आकाशवाणी मतलब क्या। इसका 90 साल में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है और आज आकाशवाणी 100 से ज्यादा देशों में अपने कार्यक्रम देती है
0: जी। बिल्कुल।
1: हर भाषा में देश की प्रोग्राम देती है, हर आंचलिक बोली में स्थानीय कार्यक्रम देती है, जिन्हें हम क्षेत्रीय कार्यक्रम या ग्रामीणों के लिए या किसानों के लिए। तो ऐसी कोई भाषा, बोली, विधा नहीं बचा जो आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित ना किया जाता हो।
0: बिल्कुल। आकाशवाणी के बारे में अगर बात की जाए तो हम आप जानते हैं कि किसी कार्यक्रम का जन्म, किसी रूपक का जन्म, किसी एक खास कार्यक्रम का जन्म कैसे होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कैसे कोई कार्यक्रम जहन में आता है और फिर कैसे वो रेडियो तक प्रसारित होता है।
1: इसमें जब आप आकाशवाणी से जुड़ते हैं तो आप सुबह से शाम तक इसमें नाटक, रूपक, झलकी,
0: हाँ,
1: संगीत में सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्म संगीत, वार्ता, भेंट वार्ता, परिचर्चा, इसके अलावा जो हमारे समाचार हैं, रेडियो रिपोर्ट हैं, विशेष कार्यक्रम हैं अवसरों पर, उसके अलावा दैनिक चर्चाएं हैं, वार्ताएं हैं, और उसके अलावा बहुत कम लोगों को पता है कि आकाशवाणी कंसर्ट, मंचीय कार्यक्रम भी करता है, कवि सम्मेलन भी कराते हैं, संगीत के कार्यक्रम भी कराते हैं, नाट्य प्रस्तुतियां भी कराते हैं। तो ऐसी कोई विधा नहीं है जो आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित ना होती हो।
0: हम आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का निर्माण कैसे शुरू होता है
1: जी,
0: एक पूरी प्रक्रिया हमें समझाइए, हमारे श्रोताओं को बताइए कि हम मान लीजिए एक रूपक या एक कोई खास विशेष कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं तो कहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है, कितने लोग शामिल होते हैं, वो कहाँ जाकर
1: रूपक को डॉक्यूमेंट्री या वृत्तचित्र के नाम से हम जानते हैं, ये तथ्य परक होते हैं
0: जी।
1: जैसे भारत में यदि हम कहें दिल्ली का लाल किला, तो किसने बनाया, कब बनाया, कितने लोग लगे, कैसे कारीगर थे, इसमें एक तथ्यात्मक जानकारी होती है
0: जी।
1: और इसके लिए पहले हमें एक शोध वर्क करना होता है उस विषय का।
0: हाँ।
1: और वो प्रामाणिक होता है।
0: बिल्कुल।
1: अब इसको यदि हम रूपक की जगह नाटक या झलकी ले लें, वो काल्पनिक
0: भी हो सकता है और काल्पनिक होता है
1: और वो मनोरंजन प्रधान होता है। रूपक जो है तथ्यपरक होता है, इसमें सूचना भी है और शिक्षा भी है, और झलकी और नाटक में मनोरंजन ज्यादा होता है
0: जी।
1: तो यदि आप जानना चाहें तो सबसे पहले हमें सामग्री का संकलन करना होता है। तो श्रोताओं की पसंद जब हमें पता चलती है, जो हमारा श्रोता अनुसंधान एकांश है वो बराबर सर्वे करता है और वो ये रेटिंग करता है कि किस कार्यक्रम के श्रोता ज्यादा है, ताकि विज्ञापन दाताओं को बताया जा सके कि इसमें हमारे इतने लाख, इतने करोड़ श्रोता हैं।
0: हाँ।
1: उस हिसाब से विज्ञापन मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब कोई एक कार्यक्रम जैसे बनाना है तो आपने कहा मीटिंग होती है।
0: हाँ।
1: मीटिंग के बिना कुछ नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: उसमें तय होता है कि आकाशवाणी में इतने उद्घोषक हैं, कार्यक्रम अधिकारी हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, कैजुअल कंपियर अनाउंसर हैं, हमने एक टास्क दे दिया कि भाई आपको ये कार्यक्रम करना है। अब मान लीजिए कुछ समय बाद कोई विशेष त्योहार आ रहा है
0: जी,
1: विशेष उत्सव आ रहा है, तो हमने किसी से कहा कि इस उत्सव पे आपको एक रूपक बनाना है और उसको दे दिया कि ये समय है प्रसारण का, ये अवधि है 30 मिनट की, अब आप फ्री हैं। अब वो संकलन करना शुरू करेगा रॉ मटेरियल, फिर उसका वो स्क्रिप्ट बनाएगा, उसमें वो नरेशन के लिए मेल फीमेल आवाज ले सकता है।
0: हाँ।
1: है ना, महिला उद्घोषक, पुरुष उद्घोषक, वो उसकी अपनी परिकल्पना
0: जी।
1: एक ले, दो ले, और उसको जोड़ते हुए फिर उसमें ध्वनि प्रभाव, संगीत प्रभाव, शब्द प्रभाव और इतना रोचक बनाया जाता है कि श्रोता उसको बिना रुके सुन सके। ये सुनने में बड़ा सरल लग रहा है लेकिन जो बनाता है ना प्रस्तुति

0: सही करता है उसके दिल से पूछिए,
1: हजारों प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो चूंकि छतरपुर आकाशवाणी में भी बहुत सारे वक्त गुजारा है आपने, और आकाशवाणी सागर की स्थापना से भी आप जुड़े हैं, तो कुछ ऐसी रोचक घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हों इन दोनों केंद्रों पर जो हमारे श्रोताओं को जानकर बड़ा ही मजा आए और अच्छा लगे, तो उन घटनाओं के बारे में हमें जरूर बताइए।
0: कई बार क्या होता था कि जैसे रेडियो प्रस्तुति में महत्वपूर्ण होता है ध्वनि प्रभाव और संगीत प्रभाव
1: जी,
0: तो मुझे एक प्रस्तुति याद आ रही है कि जिसमें एक रात का दृश्य दिखाना था किसी नाटक में, जब हम आकाशवाणी छतरपुर में थे। अब रात का दृश्य ध्वनि के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, सोचिए आप।
1: हाँ।
0: और श्रोता भी चिंतन करे कि कैसे दिखाएंगे, क्योंकि दृश्य तो है नहीं हमारे बीच में, आवाज है। अब हम ये भी नहीं कह सकते, या तो ये संवाद हो कि अरे रात हो गई,
1: यह झींगुर की आवाजें हो।
0: अब झींगुर की आवाज चाहिए थी, तो झींगुर की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए हम और एक हमारे वरिष्ठ जन रिकॉर्डर लेके ऐसी ऐसी जगह जाते थे कि झींगुर कहाँ बोल रहे हैं और उन झींगुर की आवाज को बाकायदा रिकॉर्ड किया हमने, उसे फिर बूस्ट किया और उसे अपने ध्वनि प्रभाव में डाला, तो ये भी करना पड़ा। अब जैसे बैलगाड़ी की आवाज चाहिए,
1: हाँ।
0: तो बाकायदा हम लोग रिकॉर्डर लेके बैलगाड़ी पर बैठे, बैलगाड़ी चली, बैलगाड़ी चलाने वाले की आवाज, बैलों की घंटी की आवाज, उसके पैरों की आवाज, चक्के की चर्र की आवाज, वो रिकॉर्ड की, वो एक इम्पैक्ट बना के। अब तो सारे के सारे कंप्यूटर में आ गए हैं, हमारे समय में हमें जीवंत रिकॉर्ड खोजना पड़ता था कि ये कहाँ से मिलेगा।
1: तो श्रोताओं, सुना आपने कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरा है हमारा आकाशवाणी। अच्छा डॉक्टर साहब, उस दिन के बारे में बताइए जब आकाशवाणी से आप विश्वविद्यालय में आप जा रहे थे, तो वो दिन आपको याद है कि आप कितनी यादें साथ में लेके जा रहे थे, कितने भावुक हुए थे और कैसा महसूस कर रहे थे उस दिन आप?
0: ऐसे दो मौके आए, पहले जब हम आकाशवाणी छतरपुर में अनाउंसर और बुंदेली कंपियर थे और वो साल था 1986।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो जब हमारा चयन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो जाता है,
1: हाँ।
0: तो हमें वहाँ रिजाइन देना था। यहाँ आने की खुशी थी कि हम अपने घर में आ रहे हैं,
1: हाँ।
0: और वहाँ जाने की खुशी थी क्योंकि वो मेरा पसंदीदा काम था
1: जी।
0: माइक पर बोलना, एंकरिंग करना, कंपेयरिंग करना, लोगों को बांध के रखना, सब तरह के प्रोग्रामों से जुड़ना, सीखने बहुत मिला, बहुत सीखने मिला रेडियो में। तो आखिरी एक फरमाइशी प्रोग्राम दिया था हमने और उसके बाद बड़े दुखी मन से विदा किया था। लेकिन फिर जब यहाँ आए तो कुछ दिनों बाद लगा कि नहीं, ये एक वो जहाज था तो ये समंदर है। हम विश्वविद्यालय में रह के भी आकाशवाणी से जुड़े रहे और यहाँ काम करते रहे, प्रोग्रामों में मदद करते रहे, तो वो आखिरी था। फिर ईश्वर ने साथ दिया कि रेडियो में रहती हो जान गए कि और क्या क्या पद होते हैं। तो मजेदार बात यह है कि मुझे पता चला कार्यक्रम अधिकारी एक गजेटेड पद होता है,
1: हाँ।
0: जिसका चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है
1: जी।
0: फॉर्म भर दिया, संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर हम कार्यक्रम अधिकारी बने
1: जी।
0: और आपको आश्चर्य होगा, इस आकाशवाणी सागर केंद्र की उद्घाटन का जिम्मा छतरपुर से मुझे यहाँ भेजा गया, और यहाँ एक तरह से हम कहें कि नी के पत्थर हो गए हम।
1: क्या बात है, बहुत
0: आज भी जब हम माइक पर हैं तो ये स्टूडियो कैसे बना, इसको बनते हुए देखा, इसका उद्घाटन होते हुए देखा, और आज आप 90 साल की बातें हमसे पूछ रहे हैं।
1: हमारे श्रोताओं को आकाशवाणी के संगठन के बारे में बता दें कि आकाशवाणी का संगठन किस प्रकार का होता है, यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं।
0: संगठन की बात आपने पूछी, तो देखिए हमारा दिल्ली में मुख्यालय है जिसको हम कहते हैं आकाशवाणी महानिदेशालय,
1: हाँ।
0: उसके बाद फिर हमारे जो डीडीजी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जॉन बटे हैं
1: जी,
0: पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और केंद्र। फिर उसके बाद हमारे जो राज्य हैं उसमें एक प्रमुख स्टेशन होता है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल,
1: बिल्कुल,
0: उनके अंदर जो छोटे छोटे फिर शहर हैं जहाँ जितने केंद्र हैं, जैसे हमारे यहाँ हम सागर में तो ये FM है, LRS है, यहाँ केंद्र निदेशक एक पद होता है,
1: बिल्कुल।
0: तो एक पिरामिड जैसा है हमारा महानिदेशालय, फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल, फिर स्टेट का, और फिर उस केंद्र का। तो एक केंद्र में एक केंद्र निदेशक, तीन विधाएं होती हैं, कार्यक्रम अनुभाग
1: जी,
0: तकनीकी अनुभाग और प्रशासनिक अनुभाग,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कार्यक्रम अनुभाग में कार्यक्रम अधिकारी, उद्घोषक, ड्यूटी ऑफिसर, प्रस्तुतकर्ता, कंपियर, तकनीकी अनुभाग में इंजीनियर टेक्नीशियन उनके असिस्टेंट हेल्पर

0: और प्रशासनिक अनुभाग में अकाउंटेंट हैं, स्टोर कीपर हैं, क्लरिकल स्टाफ है, प्यून है, ये तीन अनुभाग है और ये तीनों का सामंजस्य जो स्टेशन हेड है वो करते हुए चलता है।
1: कितनी सरलता के साथ आपने हमारे श्रोताओं को समझा दिया, बता दिया कि आकाशवाणी एक बड़े परिवार की तरह होता है जिसमें अलग अलग लोग होते हैं, एक मुखिया होता है और उसके साथ साथ अलग अलग लोगों को अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल, और जब तालमेल बनता है तभी ये जो कार्यक्रम आप तक पहुंचता है वो इस रूप में होता है कि आप कहते हैं वाह मजा आ गया।
0: अब जैसे कि हम माइक से बोल रहे हैं
1: जी,
0: ये माइक रखा है लेकिन इसको छूना हमें मना है क्योंकि हम उद्घोषक हैं या प्रस्तुत करते हैं।
1: हाँ।
0: इसको छूने का हक हमारे तकनीकी विभाग को,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें लीड लगाना, इसकी दुरुस्ती करना, खराबी आ जाए तो सुधारना, मतलब ये है कि हम माइक को उठा के यहाँ से वहां पटक नहीं सकते।
1: सही
0: ये काम तकनीकी विभाग का है।
1: हाँ।
0: कंट्रोल रूम टेक्निकल डिपार्टमेंट का है। अनाउंसर बूथ में टेक्निकल जो है वो पहले से सारी मशीनों को चेक करेगा,
1: बीच में नहीं आ सकते,
0: बीच में नहीं आएगा, जरूरत होगी तब आएगा
1: जी।
0: यदि कोई उसको लग रहा है कि किसी मशीन में कोई अवरोध है तो आएगा। तो इस तरह से हमारे सब अपने अपने काम में, ये कभी नहीं होता कि टेक्निकल वाला प्रोग्राम में हस्तक्षेप करे या प्रोग्राम वाला कंट्रोल रूम में कहे कि ये बटन दबा दो, सबके काम बटे हुए हैं। प्रोग्राम वाला किसी मशीन में पेचकस नहीं लगा सकता साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: होता क्या है कि जब काम बटे हैं और सामंजस्य है तब हम अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं और हमारी अच्छे प्रोग्राम अच्छी प्रस्तुतियों के साथ हमारे प्रिय श्रोताओं तक जाते हैं।
1: और श्रोताओं, हर काम के लिए आकाशवाणी में जिम्मेदार लोग होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो जिस काम में महारत रखता है उसको वो काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है। यही कारण है कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक सेकंड को गवाए हम आप तक प्रसारण पहुंचाते रहते हैं। अब डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात, हमारे श्रोता सुनते हैं आकाशवाणी तो उनको बताइए कि ये आकाशवाणी का जो परिसर होता है ये किस प्रकार होता है, यहाँ की जो सीमाएं होती हैं वो कैसी होती हैं और जो अंदर साउंड प्रूफिंग होती है, इनसे जुड़ी हुई सारी बातें बताइए।
0: अब जैसे हमने कहा तीन अनुभाग होते हैं, तो यहाँ एक स्टूडियो होता है, साउंड प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है
1: जी।
0: और मतलब छोटा मोटा धमाका भी हो जाए तो यहाँ आवाज़ नहीं आएगी। और फिर यहाँ एक अनाउंसर बूथ होता है, डबिंग एडिटिंग रूम भी कह सकते हैं या मल्टी स्टूडियो आजकल कह सकते हैं,
1: एमपी स्टूडियो।
0: एक कंट्रोल रूम होता है, मशीनों को सुधारने के लिए एक कमरा होता है, बोलचाल की भाषा में एक बढ़िया समृद्ध लाइब्रेरी होती है जिसमें पहले रिकॉर्ड टेप पुस्तकें होती थी, अब तो सब कंप्यूटर। इसके अलावा ड्यूटी रूम होता है, ड्यूटी रूम का मतलब पहला लिसनर, पहला श्रोता।
1: सही सही।
0: उसके पास एक रेडियो रखा होता है, हम जो भी प्रोग्राम दे रहे हैं वो सुनता है और लॉग बुक में एंट्री करता चलता है। कहीं यदि 5 सेकंड 6 सेकंड का पॉज आ जाए गैप, तो इमीडिएट वो दौड़ के जाता है अनाउंसर बूथ की तरफ कि भाई ये रुकावट कैसे आई। तो ये एक व्यवस्था है, हम रुकते नहीं हैं।
1: श्रोताओं, आप ये सोच रहे होंगे और सोचते होंगे कि एक अनाउंसर की आवाज़ आ रही है या एक किसानवाणी कंपेयर की आवाज़ आ रही है तो केवल वही बैठे हुए हैं, हमारे साथ पूरी टीम होती है, हर टीम का मेंबर अपने अपने स्थानों पर बैठा होता है और अपने काम में माहिर होते हुए उस काम को अंजाम दे रहा होता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते बातें तो बहुत सारी हैं और हमें लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होंगी, इतने सारे अनुभव हैं आपके पास।
0: जी जी,
1: हमें ये बताइए कि आज और कल और आगे आने वाले कल में हमारे आकाशवाणी का क्या महत्व है और इसके भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
0: मेरा निजी अनुभव तो यह है कि आकाशवाणी का भविष्य जो है उज्जवल है और इसकी गरिमा बरकरार है और रहेगी। तभी तो आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात आकाशवाणी से प्रसारित होता है
1: जी,
0: और पूरे देश में सुना जाता है और सर्वाधिक सुना जा रहा है और लोकप्रिय होता जा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: यदि इसकी पकड़ आपको बताएं भारत की 99% भूभाग में और 99% जनता तक
1: जी
0: आकाशवाणी की ही पकड़ है, तो इसको हम कैसे कहें? ये है कि ये सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और यहाँ तक कि समंदर में यदि नौका में आपका ट्रांजिस्टर है तो आपकी जान बचाएगा कि तूफान आने वाला
1: है।
0: तो ये रेडियो की
1: सस्ता, सुलभ और सरल माध्यम,
0: बैलगाड़ी पे ले जाइए। हाँ। साइकिल पे ले जाइए, गांव में आपको ऐसे दृश्य आज भी मिलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: साइकिल पर रेडियो बजता हुआ जा रहा है और मस्ती में वो साइकिल चला रहा है, पीछे उसकी पत्नी बैठी, आगे उसके बच्चे बैठे, मनोरंजन का मनोरंजन, सफर का सफर।
1: बहुत बहुत अच्छा लगा इन सारी बातों को सुनकर, आपसे जानकर। हमारे जो भी श्रोता आज की इस भेंट वार्ता को सुन रहे होंगे निश्चित रूप से उनको बहुत आनंद आया होगा और

0: उनके ज्ञान और मनोरंजन में बराबर रूप से वृद्धि हुई होगी।
1: लोग मोबाइल में रेडियो सुन पा रहे हैं, आप एक बटन दबाइए मोबाइल में अपना रेडियो सुन लीजिए। अब तो ये है कि जो आप दुनिया भर के रेडियो अपने जो स्मार्टफोन है उसके माध्यम से सुन सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक और बता दें बात कि हमारे श्रोता भी जानते हैं बहुत सारे, न्यूज ऑन AIR ये एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे आपको अपनी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू जरूर महसूस हो जाएगी। तो ऐप के माध्यम से आप इसे आकाशवाणी सागर, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर जिस भी केंद्र को पसंद करते हैं आप वहां जाएं, अपने प्रदेश को चुनें, प्रदेश में जाकर उस केंद्र को चुनें और उसके कार्यक्रम आप लगातार सुन सकते हैं, तो आपको आपके घर की याद भी नहीं सताएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब आप हमारी स्टूडियो आए और हमसे बहुत ही बढ़िया गुफ्तगू की, बहुत ही अच्छे अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको हृदय से आभार।
1: बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी सागर के सभी अधिकारी, सभी प्रोग्राम बनाने वाले, सभी कैजुअल्स और तकनीकी विभाग, प्रोग्राम विभाग, प्रशासनिक विभाग, हमारे प्रिय श्रोता जो दूर दूर तक हैं और 90 साल पूरे होने पर आप मुझे अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 बरस की सुनहरी यादों के तहत। आमंत्रित मेहमान थे डॉक्टर ललित मोहन, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी और पूर्व डीन केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। भेंट करता थे जय शिखर।

का आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770443।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
3: हो रही है एक नई शुरुआत, सुनिए पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर पहले और तीसरे मंगलवार को सुबह 8:45 से।
4: अरे काय भैया, ये सब मोज अटकाई काय कहूं दिए थे।
5: अब का बताएं भज्जा, तुमकी कोनो ये कहूं परेशानी हो तो बतावे। ये तो रामधई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
4: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
5: अब तो मैं का बताएं भज्जा, कबहूं जो ढोर बीमार, कबहूं वो ढोर बीमार, कहूं ये खोजा परेशानी, कहूं वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
4: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
5: अच्छा अच्छा।

0: सी 20 और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845
1: और सीधो लाख का कछु वो करना पड़े।
0: बड़े समझदार हो, इनमें कोड नंबर भी लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया।

0: 9-7।
1: एक बीर फिर से बता दे भज्जा।
0: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। 9-7-7-0-4-3-2-2-9-7।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और नेल लगा तो फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें,

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया

0: कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: डिस्कशंस फोकस्ड ऑन एनहांसिंग कोऑपरेशन।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने

0: यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं समीर के लिखे इस गीत के साथ। संगीत नदीम श्रवण का है, आवाज़ें कुमार सानू और आशा भोसले की हैं। फिल्म का नाम है बलमा और इस गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश हमें लिख भेजी है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवनया गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी ने धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे की ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांवकर छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली है। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू की और ग्राम चोहलदा बागपत से ये व्हाट्सएप फरमाइश है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं बलमा फिल्म का गीत।

स्वीकार किया मैंने। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल हैं निदा फाजली के, संगीत है उषा खन्ना का। फरमाइश आप सभी की। गांव खेरड़ा बाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली शाहजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके की। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना ने ये व्हाट्सएप फरमाइश भेजी है। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति वर्मा की। गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, पूजा और पायल की फरमाइश है। सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन, कुसुम और सरोज सोनार की फरमाइश है। सौराष्ट्र राजकोट से ये फरमाइश है जूली जगदीश, कुंदन रंजन और प्रफुल्ला शर्मा की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर GST की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है मन चाहे गीत और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश सावन को आने दो। इस फिल्म से आवाज है यशुदास की, गीतकार हैं दीवर, संगीत है राजकमल का। फरमाइश आप सभी की। आदर्श नगर मलूट पंजाब से ये पत्र हमें मिला। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंटी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनस शर्मा और निवान शर्मा का। बहिरिया सागर मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। नरेश नागले, सतीश विश्वकर्मा, सुनील घाघरे, मनोज पुष्पद, रमेश बैगा, राजेश नरेश, प्रसन्ना तिवारी, भवनलाल मरावी, बीके तिवारी, ब्रजेश लोधी, JP कुशवाहा, कामता प्रसाद पटेल, दीपक नाथ और भागचंद की फरमाइश है। कलानौर से ये फरमाइश है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। रजौनी जिला महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। उदय भान पाल, जयहिंद पाल, विमलेश पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, दिव्यांश बघेल और उनका पूरा परिवार। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं। सुनते हैं सावन को आने दो फिल्म का गीत। आवाज़ है यशुदास की।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अंधा कानून फिल्म का गीत, किशोर कुमार के आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फरमाइश आप सभी की। ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। परमलाल विश्वकर्मा, दशरथ विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, रत्ना विश्वकर्मा, दीपेश विश्वकर्मा, पीहू मानू और तिथि विश्वकर्मा की। और इसी गीत के लिए पत्र में प्राप्त हुआ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। ये एक और फरमाइश है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार और उनके समस्त परिवार की। और

अंधा कानून फिल्म के इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आखिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल

राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी

मराठी फिल्म पांडू हवलदार या माला घेऊन जायला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी इसका नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
0: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया, भूले बिसरे सारे किस्से आँखों में घोल गया। अब जागते गुजरेगी ये रात हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया। भीगा हुआ सिरहाना कहता है एक फसाना, जो अब तक कहा ना हमने उसे आँखों से है बहाना।

न होश खुद का न कोई फिक्र है, हर सांस में तेरा ही बस तेरा जिक्र है। फैली कस्तूरी की तरह मेरे आगे पीछे, भटकूं मैं खोजूं कि जाने किधर है। मिलता नहीं सारे बाजार ढूंढा, न जाने खोया कहां, मेरा सबर है।

वो गम दिल से लगाए बैठे हैं, हम खुद को भुलाए बैठे हैं। बन गए अजनबी तुम एक पल में, हम सक पकाए बैठे हैं। न कोई शिकवा किया न शिकायत ही कोई, हाथ सीने में छिपाए बैठे हैं। दोष दे भी तो कैसे तुझको, हम खुद चोट किस्मत से खाए बैठे।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। खिलता है चांद रोज, मुस्कुराते हैं तारे, हम इनसे क्या कहें जब तुम ही नहीं हमारे। ना आना था जिंदगी में तो तसव्वुर में क्यों हो आते, कह तो गए थे अब तुम कोई नहीं हमारे। ये बातें तुम्हारी वो यादें तुम्हारी, करते हैं लाख कोशिश बिसरी नहीं बिसारे, पर तुम हो ही नहीं हमारे।

ये गम किसी का नहीं, खुशी किसी की नहीं, न बहे आंसू मेरे तेरी आंखों से जब तक चोट तुझे लगी नहीं। इस भरी दुनिया में मेरी कोई मंजिल भी नहीं, रास्ता भी नहीं, क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां तुझे। तू मेरा दोस्त भी नहीं, हम नवा भी नहीं, मेरा दर्द भी तेरा नहीं और तू मेरी दवा भी नहीं।

0: ये था विविद भारती का नजराना।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वो

कंपनी के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Foreign Minister of Japan, Toshimitsu Motegi, and Secretary of State of the United States, Marco Rubio, are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said, in keeping with Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।